आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास 106.3 FM।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: The sounds of the streets.

सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: टास मॉर्निंग, टास मॉर्निंग आरज तनीशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदा मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर। नो क्यूज, नो हैसल। जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: Tanisha.
1: अरिजीत सिंह और प्रिया सरैया की आवाज में ब्यूटीफुल सॉन्ग जैसे मेरा तू ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM। तनिषा आगे जी आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स लेकर अ वेरी गुड मॉर्निंग मेरी जान। 4th of August ट्यूजडे का दिन, बट दिस डेट इज वेरी वेरी स्पेशल। Why? Because आज एक ऐसे लेजेंड का बर्थडे है जिन्होंने हमारे लिए म्यूजिक को डिफाइन कर दिया है। आप कोई भी इमोशन उठा लो, आपको उनका एक गाना जरूर मिलेगा। इट कैन बी दैट फन एंड रिलैक्स वाला मूड, इट कैन बी टू मच इनटू लव वाला मूड, और इट कैन बी सैड इमोशनल। एनी इमोशन यू पिक, You have a Kishore Kumar song for that. And that's what we are celebrating today. Kishore Kumar sahab ki birth anniversary aaj hum celebrate kar rahe hain. And I actually look forward to this day every year because, those beautiful tracks jo aapko pura din sunne ko milte hain, wo usually nahi hota hai. To aaj ka din to waise hi special jaane wala hai meri jaan.
2: Kyun aaj kal neend kam khwab zyada hai, lagta khuda ka koi nek irada hai.
1: Sahi baat hai.

0: सिंह कमाल गाना और किशोरदा भी है।
1: ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ।
0: ब्यूटीफुल गाना यार। All these amazing tracks are lined up for you. लेकिन अभी कर रही हूँ मैं आपके गुड मॉर्निंग मैसेजेस का इंतजार, जो इस वक्त ऑलरेडी ऑफिस के लिए निकल चुके हैं। बढ़िया, एकदम अच्छा दिन जाए आपका, दैट्स व्हाट आई होप एंड प्रे फॉर। और जो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं आपके लिए भी सेम है। एंड दोज हू हैव जस्ट वोकन अप, योर मॉर्निंग हैज जस्ट गॉटन बेटर मेरी जान, बिकॉज राइट अवे आई एम सेंडिंग किशोर दा का एक बड़ा सुंदर गाना, रात कली ख्वाब में आई। हाँ जी, आप मैसेज कीजिए मुझे 3311133। देखो मैं नंबर भूल गई क्योंकि मैं गाना सुनने के लिए इतनी एक्साइटेड हूँ। 3311106 3।
2: गाना सीखा नहीं लेकिन सुनने वालों को संगीत का जुनून सिखा दिया। आवाज बदली, अंदाज बदला, संगीत के उसूलों को तोड़ा और अपनी किस्मत बदली। आइए आज किशोर कुमार की बर्थ एनिवर्सरी पर खोलते हैं उनकी जिंदगी के कुछ अनकहे पन्नों को, बॉलीवुड के सितारों की जुबानी।
3: एक बात बहुत डरते डरते झिझकते झिझकते कहना चाहूंगा, किशोर कुमार ने जब भी किसी के साथ गाना गाया है तो आपको एक फर्क महसूस हुआ है, किसी के भी साथ, वो मेल सिंगर हो या फीमेल सिंगर। अगर एक ऐसा गाना हुआ है कि जिसका एक मेल वर्जन है, ये एक फीमेल वर्जन, किशोर कुमार का मेल वर्जन है, एक किसी और सिंगर का मेल वर्जन, तो फिर उसमें किशोर कुमार का ही गाना चला है, वो दूसरा वर्जन नहीं चला।
2: आज सारा दिन किशोर दा की कहानी सितारों की जुबानी।

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 हर जिस निशा को बिंदास मॉर्निंग में मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे।

0: जुबीर नौटियाल की आवाज में दीवानियत मूवी से खूबसूरत ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर एंड गुड मॉर्निंग मैसेजेस का सिलसिला शुरू हो चुका है तो आइए देखें. शशिकांत पाटिल जी कहते हैं, टैलेंट विल टेक अस टू हाई पोजीशन इन आवर करियर बट बिहेवियर विल हेल्प अस टू मेंटेन द हाई पोजीशन इन हार्ट्स ऑफ अदर्स एंड दैट इज सो ट्रू. यू नो आई हैव बीन वर्किंग फॉर सो लॉन्ग नाउ एंड नो मैटर कोई इंसान कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो but when it comes to their behavior to other people if it is not nice wo nahi yaad rakha jayega us kaam ki value nil ho jati hai up to a point aapko you know us kaam ki wajah se obviously bahut sare galores milenge you will achieve a lot of success and all but at one point of time it will come ki bhai iska behavior theek nahi hai mujhe iske sath kaam nahi karna hai so kaam acha kar rahe ho talent hai badhiya baat hai पर बिहेवियर पे भी फोकस करना जरूरी होता है. देन देयर इज नाज़नी जी कहती हैं, गुड मॉर्निंग, व्हेन यू राइज इन द मॉर्निंग थिंक ऑफ व्हाट अ प्रेशियस प्रिविलेज इट इज टू बी अलाइव टू ब्रीथ टू थिंक टू एंजॉय टू लव इनडीड. एंड संधु जी का भी मैसेज आ गया, गुड वाली मॉर्निंग है जी आपको भी, मे यू हैव अ वंडरफुल डे. एंड अर्श इज देयर इज वेल, अ वेरी गुड मॉर्निंग, एवरी सनराइज इज अ सेकेंड चांस, सो ट्रू. And Yasin Abbasi ji ka message hai, good morning, may your day be filled with peace, health and happiness, wishing the same for all of you. And Imran ka bhi message aaya mujhe yahan pe, good morning RJ Tanisha, before you take over the airwaves and spread smile across the city, I just wanted to be the first to make you smile. Good morning to the voice that rules on Qatar's heart. That's so sweet. Thank you so much Imran. Asma bhi good morning bol rahi hai. सबको अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. मेरी वाली भी ले लो आप.
1: गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल,
0: ओए होए,
1: लुकिंग वेरी गुड वेरी नाइस. गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल, लुकिंग वेरी गुड वेरी नाइस.
0: हां जी, ऐसे वेरी गुड वेरी नाइस ही लुक करते रहना है और बढ़िया गाना भेज रही हूं मैं आपके लिए, कूल सॉन्ग ऑफ द आवर. लौट के आएंगे फिर किशोर दा की बात करेंगे. स्टे ट्यून्ड ऑन जियो बिंदास
2: ऑसम रेडियो ऑलिव पर. आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
3: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है.

कि की आवाज में बोला मैं मूवी से क्या मुझे प्यार है. इंडीड होना चाहिए, प्यार बहुत खूबसूरत इमोशन है. यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम तनिषा के साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर. एंड एज यू नो टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग किशोर दास बर्थ एनिवर्सरी. एंड उनके जो किस्से हैं एब्सोल्युटली क्रेजी किस्से, मतलब ही वॉज वन ऑफ अ काइंड पर्सन. ही कैन सिंग द, मतलब वो एक रैंडम महफिल में चुपचाप बैठ के सडनली ही वुड स्टार्ट सिंगिंग अ सॉन्ग विच इज लाइक फुल ऑफ इमोशंस, जैसे कि कोरा कागज. इट वॉज वेरी रैंडम, आउट ऑफ द ब्लू ही जस्ट वेंट टू द कंपोजर एंड ही वॉज लाइक चलो रिहर्सल करते हैं. एंड वेन ही स्टार्टेड सिंगिंग मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, एवरीबडी वॉज स्टंड. किसी के मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकले बिकॉज ही वॉज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट हिज ओन लाइफ एंड इट वॉज सो ब्यूटिफुल. देन देर वॉज अनदर एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ कि वो इतने जॉयस थे, वो किसी भी माहौल में मस्ती भर देते थे. नाउ देर वॉज द सिचुएशन वंस कि ना क्रेजी ट्रैफिक हो रखा था एंड ही वॉज ऑल्सो स्टक इन द ट्रैफिक और बहुत लंबा वो जो ड्यूरेशन था उस ट्रैफिक का था, तो सब रुके हुए थे ड्राइवर्स, यू नो जाम लगा हुआ है. And everybody was getting frustrated ki yaar late ho raha hai this and that. Kishore Dar randomly apni car se bahar nikle, he started jamming there on the road and people went crazy. Wo unke sath jam karne lage aur wo jo ek traffic jam mein itna chaotic aur stressful moment tha usko itna fun aur joyous aur memorable bana diya unhone. So that is Kishore Dar for you yaar. Aur isi baat par sunte hain Kishore Dar ka gana Teen Deviya movie se, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत. स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास मेरी जान.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: यार मुझे 10 GB फ्री मिला मेरे हाला रिचार्ज के साथ।
2: क्या कैसे?
1: बस रिचार्ज करो और तुम्हें फ्री डेटा या मिनट्स मिलते हैं। कल मुझे 50 फ्री मिनट्स मिले।
2: रोज मिलता है क्या?
1: हाँ रोज मिलता है।
2: मैं भी अपना हाला नंबर रिचार्ज कर रहा हूँ।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
4: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

इश्क जैसा कुछ ऑन योर रेडियो 106.3 FM दनिशा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहा है हबर रेडियो ऑलिव प्रेजेंट्स ब्लैक बोर्ड स्टोरीज सो ब्लैक बोर्ड स्टोरीज में मेरा आज का सवाल है विच फूड नेवर एक्सपायर्स एक ऐसा चीज ऐसा फूड जो कि कभी एक्सपायर नहीं होता क्या है वो आपने मुझे बताना है 3311063 पर या फिर कॉल कर दीजिए 4444106 पर अ फूड विच नेवर एक्सपायर्स ऐसे खाने की कौन सी चीज़ है जो कभी एक्सपायर नहीं होती बताएं जल्दी से इंतजार कर रही हूँ फिलहाल भेज रही हूँ फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर फॉर यू स्टे ट्यून्ड एंड जी विद अस

0: दस मॉर्निंग अर्जुन तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे

0: Ayşe.
1: Ben Bacı Berat, Tezeliğim Mürçün Kiyo, Azmi Satmes, Sunil Çahan bir he. Evi yeme yoluyor, Radio 11.06.3 FM'den Ayşe Ayşe Sat. Bindaz Morning çal रहे यहां पर और Blackboard Story में मैंने पूछा था कि एक ऐसा food item जो कि कभी expire नहीं होता है. And I've got the answers over here. Yes, the correct answer is honey. क्योंकि उसमें ना बहुत कम पानी होता है. तो जो माइक्रोब्स होते हैं उनको सर्वाइव करने के लिए इनफ मॉइस्चर मिलता ही नहीं है, तो वो उसमें रह ही नहीं पाते. एंड इट इज़ नेचुरली एसिडिक, सो वो जो इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट कर देता है कि वहाँ पे बैक्टीरियाज ग्रो नहीं हो सकते. अलॉन्ग विद दैट, बीज जो है वो उसमें ऐसे एंजाइम ऐड कर देती है जो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसके अंदर प्रोड्यूस करता रहता है, और इसीलिए हनी को नेचुरली एंटी माइक्रोबियल भी कहा जाता है. जी हाँ. एंड टू ऑल दोज पीपल हैव गिवन द करेक्ट आंसर, जैसे कि अदील, अर्श, देन देर इज नुसरत, देर इज ईला, आई एम नॉट एबल टू रीड योर नेम, प्लीज यार अपना नाम लिखा करो, ठीक है. देर इज जी, ओके, सिर्फ जी लिखा है उन्होंने. एंड देर इज रूबी, थैंक यू सो मच गाइज फॉर पार्टिसिपेटिंग. नाउ किशोर दा का बर्थ एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. अगला गाना जो है बहुत ही प्यारा गाना है, रूप तेरा मस्ताना. एंड आई हैव अ रियली इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट दिस ट्रैक. सो एस डी बर्मन साहब ने ये गाना बनाया था सीनियर, ठीक है. एंड जब वो किशोर दा एंड यू नो ऑल दी प्रोड्यूसर एंड एवरीबडी वॉज देयर, उन्होंने सुनाया कि ये फुल ऐसे त्रिपुरा स्टाइल में होगा, सो इट गोज अ बिट क्लासिकल. तो वो उन्होंने सुनाया अपने तरीके से कि मुझे ऐसा चाहिए ये गाना. एंड इट वॉज नॉट लाइक द वन वी लिसन टू राइट नाउ, यू नो द ओरिजिनल ट्रैक. सो नाउ नो बडी वॉज कन्विंस्ड, एवरीबडी वॉज लाइक कि नहीं मुझे ये थोड़ा फन वाला गाना चाहिए और थोड़ा एनर्जेटिक होना चाहिए. मुझे इसको डायरेक्टर ने कहा मुझे इस गाने को ना एक ही शॉट में शूट करना है, तो प्लीज चेंज करके शोर. They all were asking him. Now, SD Barman साहब समझ गए सबके चेहरे पे ऐसे जो rejection आ रहा है. He was like, नहीं मैं change ही करूँगा, अगर तुम मेरा गाना नहीं लोगे तो तुम RD को use कर लो, मैं नहीं कर रहा ये गाना और मैं दूंगा भी नहीं. तो किशोर दा ने ऐसे प्यार से उन्हें समझाया कि देखो आपने बहुत पहले एक बंगाली सॉन्ग बनाया था, वी डिड नॉट यूज इट सो फार, उसका ट्यून इसके साथ मस्त बैठेगा. सो द आयरनी वॉज कि इस गाने के लिए किशोर कुमार साहब एस डी बर्मन साहब को उन्हीं का लिखा हुआ कॉम्पोजिशन याद दिला रहे थे. एंड दैट्स हाउ वी गॉट रूप तेरा मस्ताना. ब्यूटीफुल ट्रैक यार, आइए साथ में एंजॉय करते हैं. स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास.
2: गाना सीखा नहीं लेकिन सुनने वालों को संगीत का जुनून सिखा दिया. आवाज बदली, अंदाज बदला, संगीत के उसूलों को तोड़ा और अपनी किस्मत बदली. आइए आज किशोर कुमार की बर्थ एनिवर्सरी पर खोलते हैं उनकी जिंदगी के कुछ अनकहे पन्नों को बॉलीवुड के सितारों की जुबानी.
3: ये तो सबको मालूम है, जब पैदा हुआ था तो गला इतना कर्कश था, इतना बुरा था, खांसते रहता. तो मैं आता था कॉलेज से, जब तो मेरे को माँ और मेरे पिताजी जब खाना वाना देते सब है कोई, जब आता था खाने देते माँ इसको, जानता नहीं था मुझको भाई हूँ, बाद में मालूम हो गया मुझको भाई हूँ. तो 5 बरस का था उस वक्त, क्या हुआ गला इतना करकर और हर बात पर एक बात करे खांसे, एक बात करे खांसे. तो मैंने कहा दवाई वाई करूंगा, मैं चला गया. फिर क्या हुआ, एक दफा आया तो माँ से कुछ मैं पैसा मांगा, माँ पर पैसा दो, तो हंसिया रखा था तरकारी कार्ड में, उसमें उसका पैर लगा, उंगली कट गई, एक पैर की उंगली ऊपर की जो पैर था मैं एकदम कट कर हुआ. जो रोना 5 बरस का लड़का था, जो रोना शुरू किया, डॉक्टर आया, यार लगाए, उस वक्त दर्द मिटाने में दवाई अच्छी कोई होती नहीं थी, तो दिन में 22 घंटे रुका था. हाँ करके फिर उसको दवाई दे, फिर चुप हो जाए. फिर रोते रोते रोते रोते रोते रोते जब उसका घाव साफ हुआ, उसके लिए रियाज हो गया, गला भी साफ.
2: आज सारा दिन किशोर दा की कहानी सितारों की जुबानी.

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 RJ निशा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Ganesha.
1: Ganesha. तू झूठी मैं मक्कार से प्यार होता कई बार है ओनली ऑन रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर. Nothing to like about this weather, I'm being honest with you. और मेट डिपार्टमेंट ने कह दिया है कि अब जो है ह्यूमिडिटी और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है थ्रू आउट दिस वीक और मिस्ट फॉर्मेशन हो सकता है, फॉगी हो सकता है. सो प्लीज़ ड्राइव करते हुए ख्याल रखें, ज़्यादा स्पीड में नहीं चलने का है, थोड़ा वक्त से पहले निकल जाएँ और फ़ोन वोन यूज़ नहीं करने का है क्योंकि आप इम्पॉर्टेंट हो मेरी जान. सो अपना ख्याल रखा करो एंड ह्यूमिडिटी लेवल्स जो राइज हो रहे हैं तो कोशिश करो कि बाहर ना निकलो. ऐसा लगता है कि बंदा मेल्ट हो जाएगा भाई. यस्टरडे इट हैपेंड विद मी. ऐसे बस दो मिनट के लिए ऑफिस से बाहर निकलो एंड आई वाज लाइक आई फील लाइक आई एम मेल्टिंग. नो नॉट द मेकअप बट आई एम मेल्टिंग, ऐसी फीलिंग थी वो. इट वाज एब्सोल्युटली क्रेजी. तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें, स्टे हाइड्रेटेड, ऐसे फ्रूट्स खाएं जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो और लाइट खाना खाएं, ठीक है. आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसीलिए याद दिलाती रहती हूँ कि अपना ख्याल रखा कीजिए. समझ रहे हो बात को. सेंडिंग जबरदस्त हिट योर वे, स्टे ट्यून ऑन ट्यूब बिंदास मेरी जान.
0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

जनकार बीच से बहुत ही सुंदर गाना हमें तुमसे प्यार कितना ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर किशोर दा की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं हम यहाँ पर एंड एक बहुत ही आइकॉनिक गाना है जो कि किशोर दा ने गाया है सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या सागर मूवी से बड़ा ही प्यारा गाना जावेद अख्तर साहब का लिखा हुआ कॉम्पोजिशन है आर डी बर्मन साहब की सो जब ये गाना बन रहा था जावेद अख्तर साहब कुछ थोड़ा सा अंतरा वगैरह लिख कर लाए थे इनिशियली एंड सबको बहुत पसंद आया एंड एवरीबॉडी वाज लाइक कि या बढ़िया आर डी बर्मन साहब ने एक ट्यून भी कंपोज कर दिया उसके लिए और मतलब मस्त एकदम कमाल साउंड कर रहा था नाउ उनको पूरा कंप्लीट करके लाने के लिए कहा एंड ही गेव हिम लाइक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम आर डी बर्मन साहब ने जावेद अख्तर साहब को बहुत बढ़िया अच्छा लंबा समय दिया कि आप अच्छे से लिख कर लाओ पूरा कंप्लीट करके लाओ इसको नाउ व्हेन जावेद अख्तर साहब केम विद द सॉन्ग वहाँ पर आर डी बर्मन साहब थे किशोर दा थे और जावेद अख्तर ने बोला कि देखो गाना तो मैंने लिख दिया है पर जो इसकी हुक लाइन है वो टेम्पो पर नहीं बैठ रही है वो थोड़ी अलग है तो आर डी बर्मन साहब और किशोर दा दोनों बोले कि यार इतना टाइम मिला था तो क्यों नहीं टेम्पो पर लिखा तो ही वॉज लाइक बट ये लाइन बहुत सुंदर है आई जस्ट वॉन्टेड इन द सॉन्ग तो उन्होंने कहा चलो सुनाओ व्हेन ही टोल्ड देम अबाउट द लाइन कि सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या आई वॉन्ट दिस लाइन इन दिस सॉन्ग तो उसी वक्त इमीडिएटली किशोर दा ने गाना शुरू किया आर डी बर्मन साहब ने ट्यून कंपोज की और पूरी ट्यून चेंज कर दी जो इनिशियली थी जस्ट टू फिट इन द टेम्पो ऑफ दिस लाइन एंड दैट्स हाउ वी गॉट दिस आइकॉनिक ट्रैक सागर जैसी आंखों वाली व्हाट अ ब्यूटीफुल गाना यार साथ में एंजॉय करते हैं सागर मूवी से किशोर दा की आवाज में स्टे ट्यून एंड जी बिंदास

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: यार कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
2: सलवा रोड पर वैल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
1: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई।

0: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
1: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

You're listening to Radio All 106.3 FM, Tanisha आपके साथ बिन दास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. एंड जून 2025 में जो रोबो टैक्सी, ड्राइवरलेस रोबो टैक्सी का जो एक ट्रायल शुरू हुआ था वो 94% सक्सेस रेट के साथ कंप्लीट हो गया है. मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने अनाउंस किया है कि जो ये फेज्ड ऑपरेशनल ट्रायल्स थे लेवल 4 ऑटोनॉमस इलेक्ट्रिक टैक्सीज के, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरे हो गए. नाउ दे आर गोना मूव टू द सेकंड फेज. एंड जिसने ट्राई करी थी, डू लेट मी नो द एक्सपीरियंस. आई ऑल्सो ट्राई टू गो बट कुड नॉट, कुछ ना कुछ तो काम निकल के आ गया था, आई डोंट रिमेंबर. बट या, जिसने भी इस ट्रायल में पार्ट लिया था, डू शेयर वॉट वॉज योर एक्सपीरियंस. 3311 1063 पर एंड स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास.

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग आरजे तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओनली 106.3 एफएम जियो बिंदा दस मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे

0: यार कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
1: सलवा रोड पर वैल्वलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
0: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई।
1: अरे भाई वहाँ ट्रेंड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
2: विजिट वैल्वलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765 5954। वैल्वलिन, ड्रिवन बाय ट्रस्ट, पावर्ड बाय क्वालिटी।
3: This is Deepika Padukone.
4: Deepika Padukone.
3: Radio Olive 106.3.
5: I'm in number one. Radio Olive.
6: Olive Sunil Radio Network. Qatar's number one Asian Radio Network.
7: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
8: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: You're listening to Radio 106.3 FM, Tanisha aapke saath. Bindaas mornings chal raha hai yahan par. And yesterday, Commonwealth Games, jo ki Glasgow mein ho rahe the, finally conclude ho gaye hai. And the closing ceremony was very, very special. Kyunki Glasgow ne India ko Commonwealth Games ka flag jo hai, wo saup diya hai. Because 2030 ke Commonwealth Games hone wale hai, Ahmedabad, India mein. It is gonna be huge and amazing, obviously. और इस बार का जो हमारा टैली था मेडल्स का कॉमनवेल्थ गेम्स में, वो भी बहुत अमेजिंग था. 12 मेडल्स जीते हमने, 2 गोल्ड, 7 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज. सबने बहुत कमाल की परफॉर्मेंसेस दी है, कूडोज टू ऑल ऑफ देम. एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स. फिलहाल यू लुक फॉरवर्ड टू द कूल सॉन्ग ऑफ द आवर व्हिच आई एम सेंडिंग योर वे. स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास मेरी जान.
1: Cool song.
0: Radio Olive पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: बात है सर, क्या बात, ये बात है.
1: Cool song.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर
1: योर स्पेशल ऑफर
2: हाँ ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ
1: वाह ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है
2: बिल्कुल मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
4: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे
5: मेरा

बंटी और बबली से कजरारी ऑन योर रेडियो 106.3 एफएम त्रिशा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर एंड वी आर सेलिब्रेटिंग किशोर दास बर्थ एनिवर्सरी. सो अगला गाना जो मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत गाना है याराना मूवी से और पिक्चराइज किया गया है अमिताभ बच्चन से आपके ऊपर एंड देर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड दिस ट्रैक. सो द ट्रैक इज छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा. ओए होए बहुत प्यारा गाना है. सो जब ये गाना बन रहा था राजेश रोशन साहब ने इसे कंपोज किया है और साथ में किशोर दा ने गाया है. सो राजेश रोशन साहब को लगा कि यार किशोर दा कैसे गा पाएंगे बिकॉज इट इज़ इन दैट रविंद्र म्यूज़िक यू नो एक उस तरह से क्योंकि किशोर दा सीखे हुए नहीं थे म्यूज़िक बट उन्होंने सिखाया काफ़ी लोगों को है दैट्स अ फैक्ट. बट स्टिल काफ़ी लोगों ने ये बोलने की कोशिश करी कि इन्हें तो नहीं आता है कैसे कर पाएंगे एंड ऑल. बट सत्यजीत रे जो थे उन्होंने सबसे पहला गाना गवाया था किशोर दा से रविंद्र म्यूजिक में एंड किशोर दा वॉज लाइक वो मुझे सर्टिफिकेट देंगे कि मैं गा सकता हूँ ये एंड दैट्स हाउ ही गॉट दिस ट्रैक छूकर मेरे मन को. बट देर इज अनदर थिंग जो डायरेक्टर थे मूवी के ही वॉज नॉट इन अ गुड मूड जिस दिन ये गाना कंपोज हो रहा था. ही जस्ट केम एंड वॉज लाइक आई डोंट वॉन्ट दिस सॉन्ग इन द मूवी चाहिए ही नहीं मुझे हटा दो इसको. एंड राजेश रोशन साहब वॉज लाइक कि नहीं भाई ये तो बहुत अच्छा गाना है यू शुड नॉट बी डूइंग दिस एंड ही वॉज जस्ट वेरी एंग्री ही वॉज नॉट रेडी टू रीजन एट ऑल. उन्होंने साफ इनकार कर दिया तो राजेश रोशन साहब ने बोला कि मैं तो देखो इसे रिकॉर्ड करूंगा आपको रखना है मत रखो आप यहाँ से अभी जा सकते हो. उन्होंने स्टूडियो से उन्हें जाने के लिए कह दिया वो चले गए. एंड देन लेटर जब ये गाने का जो रिकॉर्डिंग है वो अमिताभ बच्चन के पास पहुँचा तो शाम को अमिताभ बच्चन कॉल करते हैं राजेश रोशन साहब को और कहते हैं कि यार ये तो बहुत प्यारा गाना है एंड देन ही टेल्स द इंटायर स्टोरी कि हाउ द डायरेक्टर डजंट वांट दिस ट्रैक इन द मूवी. तो अमिताभ बच्चन ने आगे से शर्त रखी कि अगर ये गाना मूवी में नहीं होगा तो मैं भी इस मूवी में नहीं हूँ. अब ये बड़ी दुविधा की बात हो गई और अमिताभ बच्चन की वजह से वी एक्चुअली गॉट दिस ट्रैक इन द मूवी याराना छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा. किशोर दा की आवाज में एंजॉय करते हैं स्टे ट्यून्ड ऑन जियो बिंदास मेरी जान.

0: 24/7 open. Routine care, treatment या dental emergency. Expert dentist और advanced facilities के साथ care हर वक्त available है. Call 4411133. Also, visit our dental centers in Azizia or Muntaza. Naseem Surgical and Medical Center. Healthy smiles anytime.
1: छह से दस हर जिस निशा को बिंदास मॉर्निंग में मॉर्निंग
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
3: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: तनिषा तनिषा
1: गहराइया से होने दो जो होता है. नो इट्स नॉट फ्रॉम गहराइया. आई जस्ट सॉ सवेरा एंड लोतिका एंड आई रीच्ड गहराइया. इट इज फ्रॉम खो गए हम कहाँ. इंसानों से गलतियां हो जाती है यार. इट्स ओके. ऑल लिसनिंग टू रेडियो ऑल एफ 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ. बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. वैकी विजडम में आज हम बात करेंगे डेनमार्क के स्कूल्स की. सो वहाँ पर ना 6 से 16 साल के जो बच्चे होते हैं, मतलब फर्स्ट से लेकर 9th ग्रेड तक के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको वीकली क्लास टाइम मिलता है जिसको कहते हैं क्लासेंस्टेड. सो इसमें वो बेसिकली क्या करते हैं, वो एक साथ बैठते हैं, दे टॉक थ्रू देयर प्रॉब्लम्स, वो एक दूसरे को सुनते हैं, प्रैक्टिस करते हैं काइंडनेस और टीम वर्क. एंड ये 1990s से उनके टाइम स्कूल टाइम टेबल में चलता आ रहा है. एंड दिस इज सच एन अमेजिंग थिंग बिकॉज यू नो दैट इज द फाउंडेशन एज. उस वक्त जो आपने बच्चों को सिखा दिया वो चीज लंबे तक चलेगी. एंड आई थिंक दीज थिंग्स यू नो एम्पैथी काइंडनेस अंडरस्टैंडिंग ये सारी चीजें जितनी छोटी उम्र में समझा दी जाए और प्रैक्टिस करवाई जाए उतना बेहतर होता है. तो आई थिंक ऑल द स्कूल्स अराउंड द वर्ल्ड शुड यू नो इम्प्लीमेंट दिस क्लास टाइम. इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग आइडिया यार. ऑन दैट नोट सेंडिंग फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर. स्टे ट्यून्ड. बिंदास

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: यार मुझे 10 GB फ्री मिला मेरे हाला रिचार्ज के साथ।
2: क्या कैसे?
1: बस रिचार्ज करो और तुम्हें फ्री डेटा या मिनट्स मिलते हैं। कल मुझे 50 फ्री मिनट्स मिले।
2: रोज मिलता है क्या?
1: हाँ रोज मिलता है।
2: मैं भी अपना हाला नंबर रिचार्ज कर रहा हूँ।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।

0: बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग आरजे तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha, आपके सैद बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं. यहाँ पर एक क्विक चैलेंज दे रही हूँ आपको, ठीक है? आपको आपका फोन का पिन याद है? याद है. नेटफ्लिक्स का पासवर्ड? ऑब्वियसली याद है. फेवरेट कॉफी ऑर्डर? डेफिनेटली याद है. तो क्या आप ये नंबर याद कर सकते हो जो मैं अभी आपको बोलने वाली हूँ? फटाफट से ध्यान से सुनो एंड नोट इट डाउन और याद करके रखो, ठीक है? 7765954. वॉट? 7765954. जी, सो ये नंबर है वैल्वोलिन एएमटीसी प्रीमियम क्विक सर्विस का, जो कि सलवा रोड पे है. आपने वहां पे कॉल करना है, उन्हें बताना है कि भाई मुझे ना मेरी कार को एकदम बढ़िया सी सर्विस दिलानी है. ऑल्सो आई डू नॉट रिमेम्बर लास्ट टाइम मैंने कब करवाई थी, तो उसका भी आपके लिए जुगाड़ है वहाँ पे. क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल दे यूज़ यू नो जेन्युइन वैल्वोलिन प्रोडक्ट, जो कि बहुत अमेजिंग है. प्रीमियम फिल्टर्स यूज़ करते हैं. अलॉन्ग विद दैट दे हैव डिजिटल पासपोर्ट फॉर योर कार, जिसमें आपकी कार की पूरी सर्विस हिस्ट्री जो है वो ऑलरेडी नोटेड रहेगी. सो आपको बार बार याद करने का झंझट नहीं है. इट विल बी हैंडी. आप बस उसे खोल के देखिए एंड यू विल नो कि लास्ट टाइम कब करवाई थी, क्या चेंज करवाया था, क्या नहीं करवाया था, क्या करवाना है, एवरीथिंग. सो क्या करना है आपको? आपको जाना है वैल्वोलिन एएमटीसी प्रीमियम क्विक सर्विस ऑन सलवा रोड. एक बार फिर से नंबर बता रही हूँ, 7765954. जी, 7765954. सुनते रहिए रेडियो ऑलिव. किशोर दा का स्पेशल गाना आ रहा है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं. कुछ देर में लौट करा दी जियो बिंदास मेरी जान.
1: गाना सीखा नहीं लेकिन सुनने वालों को संगीत का जुनून सिखा दिया. आवाज बदली, अंदाज बदला, संगीत के उसूलों को तोड़ा और अपनी किस्मत बदली. आइए आज किशोर कुमार की बर्थ एनिवर्सरी पर खोलते हैं उनकी जिंदगी के कुछ अनकहे पन्नों को बॉलीवुड के सितारों की जुबानी.
2: तो जब मैंने आराधना का पहला गाना सुना, मेरे सपनों की रानी कब आओगी तुम, तो ऐसे लगा जैसे राजेश खन्ना खुद गा रहे हैं. ऐसे लगा जैसे वो सामने खड़े हैं और वो गा रहे हैं और मैं उनको कॉपी कर रहा हूँ. या दो जान एक जिस्म हो.
1: आज सारा दिन किशोर दा की कहानी सितारों की जुबानी.

0: Tanisha.
1: दिल तो पागल है मूवी से आशुता है कि आज में लेके ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहा है और थोड़ी टेक्नोलॉजी की बात कर लें क्योंकि कल तो हलचल ही मच गई थी माय गॉड सो यस्टरडे लाइक अराउंड 8 PM यहाँ पे इवनिंग हो रहा होगा इंडिया में और यहाँ कतर में भी कुछ लोगों के व्हाट्सएप अकाउंट्स के साथ ऐसा हुआ अंडर रिव्यू चले गए हैं यू कैन नॉट यूज दी अकाउंट्स एनी मोर लाइक आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो आप चैट नहीं कर पा रहे हो आप कॉल नहीं कर पा रहे हो एंड देन द नोटिफिकेशन सेज कि हम 24 आवर्स के बाद आपको बताएंगे कि क्या स्टेटस है सो सब ऐसे पागल हो गए बौखला गए कि भाई क्या हो गया हैक वैक तो नहीं हो गया डर गए थे बट एक्चुअली मेटा डिड दैट वो रिव्यू कर रहे थे कुछ अकाउंट्स को एंड अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों के अकाउंट परमानेंटली डिसेबल भी हुए हैं बट काफी लोगों को उनके अकाउंट्स वापस मिल गए हैं चैट्स डिलीट हो गई हैं डेटा हैज बीन डिलीटेड और आजकल जिस तरह से हमने अपना सारा काम उठा के व्हाट्सएप पे ले आए हैं कम्युनिकेशन मोस्टली व्हाट्सएप पे हो रही है तो काफ़ी सारे लोगों को इससे बहुत प्रॉब्लम हुई है बिकॉज उनका इम्पोर्टेंट डेटा जो था इम्पॉर्टेंट डेटा व्हाट इज़ रॉन्ग विद मी इम्पॉर्टेंट डेटा जो था वो लॉस्ट हो गया तो दिस इज़ नॉट ओके दैट इज़ वाई यू नो ये सारा सोशल मीडिया मिला के ऐसे एक साथ नहीं रख लेना चाहिए था और अगर रख दिया है तो हमें दिमाग लगाना चाहिए था कि हमें अपना ऑफिशियल वर्क वहाँ पर नहीं लेकर आना चाहिए था पर हम कहाँ मानेंगे खिचड़ी बनाने में तो एक्सपर्ट है बाय द वे लेट मी नो आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ था डिड यू सी दैट नोटिफिकेशन ऑन योर फोन्स की व्हाट्सएप अंडर रिव्यू है क्योंकि टच वुड मेरे साथ तो नहीं हुआ था इफ हैपेंड विद यू डू लेट मी नो 3311 1063 पर एंड स्टेट यूनिटी रेडियो ऑलिव जियो बिंदास मेरी जान
0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है

0: झुमका
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर. किशोर दा की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं हम. और अभी जो मैं एक गाना प्ले करने वाली हूँ आपके लिए, इट्स सच अ ब्यूटिफुल ट्रैक, टॉक्स अबाउट द सेंस ऑफ लाइफ. जिंदगी एक सफर है सुहाना, फ्रॉम द मूवी आराधना. सो जब ये गाना बन रहा था, म्यूजिक डायरेक्टर्स वर नॉट ओके वट एवर किशोर दा वॉज डूइंग इन द सॉन्ग. सो ही स्टार्टेड रिकॉर्डिंग और जैसे ही सुना, शंकर जयकिशन जो कि म्यूजिक डायरेक्टर थे इसके और प्रोड्यूसर थे जेबीसीपी साहब, वो तीनों बहुत नाराज हो गए कि भाई क्या कर रहे तू ये. एवरीबडी स्टार्टेड येलिंग एट किशोर कुमार कि डोंट डू दैट. बिकॉज जैसे ही किशोर दा ने इसे गाना शुरू किया, उन्हें जो बताया गया था कि यू नो ऐसे बहुत संजीदा सा गाना है, जिंदगी के बारे में बात करता है, तो उसी तरह से गाना. पर जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू हुई, किशोर दा के अंदर का बच्चा जाग गया एंड ही स्टार्टेड डूइंग थिंग्स जो हमने एक्चुअली गाने में सुनी है, यू नो, हंसना, अजीब आवाजें निकालना, योडलिंग, यस एवरीथिंग. एंड द म्यूजिक डायरेक्टर्स वर नॉट हैविंग इट. दे वर लाइक, नहीं, अगर तुम नॉर्मल नहीं गा सकते हो तो हम तुम्हें हटा देंगे. वैसे भी रफी साहब एक और वर्जन गा रहे हैं इसका, हम ये वाला वर्जन भी उन्हीं से गवा लेंगे. किशोर दा वॉज लाइक, प्लीज मुझे एक बार मेरे तरीके से गाने दो. इफ यू डोंट लाइक इट देन मत रखना, या फिर मेरे पैसे काट लेना, बट प्लीज लेट मी डू इट बिकॉज इट इज अबाउट जिंदगी. सीधा साधा कैसे हो सकता है, इट शुड बी फुल ऑफ फन, जॉय, एक्साइटमेंट. तो वो एसेंस आना चाहिए इंस्टेड ऑफ यू नो कावन कंपोज वाला थिंग. तो सिप्पी साहब ने कहा चलो ठीक है एक बार ट्राई कर लो तुम. एंड ही सैंग एंड एवरीबडी वॉज सो हैप्पी. दे हैड यू नो टीयर्स इन देयर आईज, खुशी के कि भाई क्या सुंदर गाना बना दिया है. एंड उस साल का सुपर डुपर हिट ट्रैक था ये. तो आइए एंजॉय करते हैं जिंदगी एक सफर है सुहाना, आराधना मूवी से किशोर दा की आवाज में. स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास.

0: माँ मुझे छोटे एड ब्रेक्स दिखाई दे रहे हैं माँ।
1: ऑल एफ शॉर्ट ब्रेक।
0: आइला जादू
2: यार, कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
3: सलवा रोड पर वैल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
2: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई।
3: अरे भाई वहाँ ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
4: विजिट वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765-5954। वैल्वोलिन, ड्रिवन बाय ट्रस्ट, पावर्ड बाय क्वालिटी।
5: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
6: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: मैं हूँ सारिका। आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3।
1: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: Tanisha. You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha hai aapke saath. Bindaas mornings chal rahe hain yahan par. And Kishore Da ki birth anniversary aaj hum celebrate kar rahe hain. To पूरा दिन आप किशोर दा के बेस्ट गाने सुनने वाले हैं हर घंटे. और फिलहाल 9:51 हो चुका है, मेरे जाने का वक्त हो गया है. कल मिलते हैं सुबह 6 बजे. आपने रखना है अपना ढेर सारा ख्याल. स्टे हाइड्रेटेड मेरी जान. ऑल्सो इफ यू हैवन फॉलोड अस ऑन सोशल मीडिया, जल्दी से जाओ फॉलो कर लो. रेडियो ऑल डॉट क्यू इज द हैंडल. और जो भी पोस्ट वगैरह हम वहाँ पे डाल रहे हैं और कॉन्टेस्ट वगैरह चल रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करो, इंटरेक्ट करो. हमें पता चलने चाहिए कि चीज़ें आप तक पहुँच रही हैं, ठीक है. एंड इफ देयर इज एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर विद अस, 3311-1063 इज द नंबर. यू कैन मैसेज एनी टाइम. यू कैन ऑल्सो कॉल 4444-1063 पर. और बाकी सोशल मीडिया तो आपके लिए है ही, कभी भी मैसेज कर सकते हो यार, बिंदास खुल के. सुनते रहिए रेडियो ऑल 106.3 FM. Have a nice day, मेरी जान. चियो बिंदास.
1: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो. हमने समझा था इश्क की मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा आम शक्ल ना हो.

0: सानू जी ने क्या खूबसूरती से हमारी जनरेशन के प्यार को जो है वो एक्सप्लेन किया है कि देखो वैसे भी पैसे जो है वो थोड़े से हैं, लेकिन फिर भी अगर तुम कहोगे कि तुम्हारे लिए जो है वो मोमो खरीद दूं तो मैं खरीद सकता हूं, लेकिन तुम भी समझो यार इतने से पैसों में 6 मोमोज ही आएंगे, उसमें हम दोनों कैसे गुजारा करेंगे। इससे मुझे ये समझ आया है कि फाइनेंशियल दिक्कत हर एरा में थी, प्यार में सबको फाइनेंशियली जो है वो जूझना ही पड़ता है। वेलकम जी, गुड मॉर्निंग 106.3 रेडियो आरएफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ मैं लाइफ मस्त है, जहां पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाते हैं हम लोग। अब देखिए यार, 3 घंटों के लिए जो है अपने सारे स्ट्रेस को, अपनी लाइफ की सारी दिक्कतों को आप और मैं साइड में रख कर एकदम 1-to-1 बातचीत करने वाले हैं। और देखिए, अगर आज आपका हैप्पी वाला बर्थडे है, सो यू नो हैप्पी बर्थडे, आप अगस्त में पैदा हुए हो, ऑलरेडी आप इतने अमेजिंग हो, लेकिन अगर आप आज के दिन पैदा हुए तो अब आप अपना बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हो किशोर दा के साथ। तो यस, किशोर दा की आज बर्थ एनिवर्सरी है एंड इतना अमेजिंग लेजेंड जो है वो हमें अगस्त में मिला है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त में सारे लेजेंड्स का ही बर्थडे आता है, चाहे मैं हूँ, सिमरन हूँ, तनीषा हो या हमारे जो है किशोर दा हो। सो आज जो है, आज आप सारा दिन किशोर दा की कुछ अमेजिंग स्टोरीज जो है वो सुनने वाले हो एंड साथ में उनके अमेजिंग अमेजिंग गाने भी सुनने वाले हो, एंड इसके साथ भी बहुत सारी बातचीत जो है वो हम अपनी जारी रखेंगे, चाहे वो फैशन की हो, चाहे वो मूवीज की हो या वो मौसम की हो। सो फिलहाल किशोर दा की एक अमेजिंग वाली कहानी आपके रेडियो सेट्स पर आ रही है, वॉल्यूम बढ़ाकर इसे सुनो, उसके बाद क्या यही प्यार है ये वाला गाना जो है आएगा आपके रेडियो सेट्स पर। सो इसे जल्दी से इंजॉय करो और वापस आपकी कशिश के पास लौट कर आ जाओ। कहते रहो जियो बिंदास।
1: गाना सीखा नहीं लेकिन सुनने वालों को संगीत का जुनून सिखा दिया। आवाज बदली, अंदाज बदला, संगीत के उसूलों को तोड़ा और अपनी किस्मत बदली। आइए आज किशोर कुमार की बर्थ एनिवर्सरी पर खोलते हैं उनकी जिंदगी के कुछ अनकहे पन्नों को, बॉलीवुड के सितारों की जुबानी।
2: वैसे अद्भुत कलाकार को अब क्या कहा जाए, उनको नमस्कार करूंगा, शत शत प्रणाम करूंगा। बहुत सी फिल्मों में उन्होंने जो मेरे लिए पार्श्व गायकी की है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज भी उन्हीं गानों की वजह से हम लोग जीवित हैं।
1: आज सारा दिन किशोर दा की कहानी सितारों की जुबानी।

0: Trek. Brought to you by Nanad Al Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 10:15. दैट इज 10:15. स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास.
2: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
3: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर.
2: योर स्पेशल ऑफर?
3: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है. ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ.
2: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है.
3: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है.
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए. अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
4: नमस्कार, माय नेम इज आशीष विद्यार्थी एंड यू आर लिसनिंग टू कतर्स टॉप मोस्ट हिंदी एफएम चैनल 106.3 रेडियो ऑल ओवर जियो बिंदास.

0: ओए क्या गाना था ना यार, ऐसा लग रहा है कि यार आज वीकेंड वाला वाइब है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। और अगर आपको नहीं आ रहा है तो ले लो यार थोड़ा वीकेंड वाला वाइब, क्यों नहीं। मतलब अगर मिड वीक वीकेंड वाला वाइब अगर हम इंजॉय करने लग जाएंगे तो वीक थोड़ा हल्का लगने लगेगा ना। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश, एड शो आपके लिए लेकर आ गई लाइफ मस्त है, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रहे हैं हम लोग। अब देखिए यार, मौसम तो ऐसा हो रहा है कि मैं इसे अगर दो बातें गुस्से में कह दूं तो मतलब कोई गलत बात नहीं होगी। इस वक्त देखिए टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, हाईएस्ट टेम्परेचर आज का 41 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है और आज का लोएस्ट टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। सनस्क्रीन लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है आपको, और ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत बहुत बहुत ज्यादा है। मतलब अगर 38 डिग्री इस वक्त टेम्परेचर हो रहा है तो 41 डिग्री सेल्सियस आपको फील होगा क्योंकि ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा है। और जैसे ही आप अपनी बिल्डिंग से या अपनी कार से बाहर पैर रखोगे, अगर आप चश्मे पहनते हो तो आपको ये जग जो है धुंधला धुंधला से दिखने लगेगा। तो चलिए इस हीट को बीट करने के लिए जो है म्यूजिकल बीट्स का सहारा लेते हैं। कूल सॉन्ग ऑफ द आर आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, एक अमेजिंग सा गाना मिलिंद गाबा की आवाज में। ये गाना जब मैं स्कूल में थी ना तब सुना करती थी, शी डोंट नो गाना जो है आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर। खुद को डेडिकेट करते हुए ये गाना जो है आप लोगों को सुना रही हूँ, वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय करो और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

यार बॉलीवुड अब ऐसे गाने क्यों नहीं बनाता है? मतलब आप आंखें बंद करो, ये गाने सुनो और अपने आप आंसू का एक कतरा आपके गाल से ऐसे बहना शुरू हो जाता है। कोई दुख नहीं है मेरे जीवन में, लेकिन फिर भी ऐसा होने लगता है। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रहे हैं हम। अब देखिए यार, हमने ना मैं वापस आऊंगा देखकर इतना ज्यादा इंजॉय किया, सब रोए, मतलब हंसते खेलते थिएटर में गए थे, रोते हुए वापस आए। इम्तियाज अली जी का कुछ मैजिक ही ऐसा है, चाहे मैं जब भी मेट की बात करूँ, तमाशा की बात करूँ, या फिर मैं बात करूँ मैं वापस आऊंगा, हाईवे, और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जिनके बारे में हम बात करते रहेंगे, थक जाएंगे लेकिन बातें खत्म नहीं होंगी। अब देखिए यार, इम्तियाज अली की मूवी के लिए हमें और बहुत ज्यादा वेट अब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक नए मास्टरपीस के साथ वो वापस आ रहे। हाँ जी, लैला मजनू मूवी को हमने इतना सारा प्यार दिया था, अब इसके बाद हीरे रांझा की कहानी जो है वो इम्तियाज अली अब हमें सुनाने वाले हैं अपनी ब्यूटिफुल तरीके से। तो इम्तियाज अली लिखने वाले हैं, डायरेक्ट करने वाले हैं, एकता कपूर की प्रोडक्शन में ये मूवी बनने वाली है। एंड गेस व्हाट, हीरे रांझा में हमें कौन दिखने वाला है? हम सब की, यू नो, दिलों की धड़कन। ओ माय गॉड, रोहित सराफ जी जो है, रोहित सराफ मतलब एक चार्मिंग एक्टर हैं, मिसमैच में हमने उन्हें इतना पसंद किया, ऊपर से उन्होंने जो बॉलीवुड में एंट्री ली है सिर्फ उनके वजह से, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी देखी थी मैंने वरुण धवन की वजह से नहीं, जानवी कपूर की वजह से नहीं, सिर्फ रोहित सराफ की वजह से। एंड इनके अपोजिट जो है एक नई एक्ट्रेस को जो है वो यू नो लॉन्च करने की बात चल रही है हीर रांझा में। सो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ, मतलब अगले महीने से यानी सितंबर से जो है इस मूवी के ऊपर काम जो है वो शुरू हो जाएगा, एंड होपफुली नेक्स्ट ईयर एंड तक हमें ये मूवी देखने को मिल जाएगी। एक्साइटेड इम्तियाज अली फैंस। वैसे देखिए, मस्त मगन गाना जो है वो आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर। ये मूवी भी मतलब पहले बहुत यू नो इसमें बहुत सारी बातें हुई थी कि यार ये अच्छी नहीं है, एंड मतलब चेतन भगत ने बुक लिख दी ठीक है, उसके बाद मूवी बनानी जरूरी है क्या? लेकिन अब मतलब इस मूवी का रेफरेंस दिया जाता है, सूखी रोटी की बात करी जाती है। गाइज, अरिजीत सिंह की आवाज में ये ट्रैक एंजॉय करके आइए, मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी सी देर में, उसके बाद बात करेंगे आपके स्ट्रेस की। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

कभी कभी लगता है गले से और मुंह से नहीं गा रहे हैं सोनू निगम, एकदम दिल से गा रहे हैं। और दिल से गाने पे इतना अच्छा लग सकता है क्या? मैं तो कैसे भी गाऊं बुरा ही लगता है। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूं आपकी कसुशन। शो आपके लिए लाइफ मस्त लेकर आ गई हूं, जो आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रहे हैं। अब हर रोज मैं आती हूं, आपको एक ऐसा फनी तरीका बताती हूं जिससे आप अपना स्ट्रेस कम कर सकते हैं। आज भी एक ऐसे ही तरीका बताऊंगी। सो जब भी आपको एंजाइटी हो रही हो या स्ट्रेस हो रहा हो, ये चीज है जो आप कर सकते हो। आपको बस अपनी जगह से उठना है, यानी खड़े होना है, एंड अपने हाथों को ऐसे झटकना है। अब मैं आपको दिखा तो नहीं सकती कैसे झटकना है, लेकिन बस आपको अपने हाथों को झटकना है। इससे आपकी बॉडी का एड्रेनल रश जो है वो बढ़ेगा, एंड इससे कॉर्टिसोल जो है वो कम होगा, यानी कहीं ना कहीं आपका जो स्ट्रेस है वो बाहर निकलेगा बॉडी से। सो बिल्कुल जैसे हाथ धोने के बाद आप हाथ झटकते हैं, पानी जो हाथ पर है उसे झटकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से अपना स्ट्रेस भी आप ऐसे हाथों को जो है झटक कर बाहर निकाल सकते हैं। बस एक बार ट्राई करके देखिएगा, आपके साथ अगर काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो बताइएगा मुझे 3311063 पर। फिलहाल ऑलिव फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: Morning updates.
1: Qatar develops smart traffic management systems. Beyond autonomous mobility, the ministry has also implemented a comprehensive national traffic data project that led to a creation of transportation data management system. The digital platform uses advanced spatial and geographic database to analyze traffic flows, support transport studies, and strengthen data-driven decision-making in line with international standards. Haya wins Silver Stevie Award for Technology Excellence in Government Innovation. Qatar Tourism has announced that the Haya platform has been awarded silver in the Technical Innovation of the Year in Government Technology category at 2026 Stevie Award for Technology Excellence, recognizing its continued evolution as a digital platform driving AI-enabled, automated, and intelligently integrated government services. Qatar amends tenancy law, introduces 250 riyal lease registration fee and new rental dispute procedures. Qatar has enacted Law No. 8 of 2026, amending certain provisions of Law No. 4 of 2008 concerning the leasing of real estate, introducing 250 riyal lease registration fee, expanding mandatory lease registration requirements for certain beneficiaries of state property, and revising the procedures governing rental disputes, appeals, and penalties.
0: Olive updates. गाना सीखा नहीं, लेकिन सुनने वालों को संगीत का जुनून सिखा दिया। आवाज बदली, अंदाज बदला, संगीत के उसूलों को तोड़ा और अपनी किस्मत बदली। आइए आज किशोर कुमार की बर्थ एनिवर्सरी पर खोलते हैं उनकी जिंदगी के कुछ अनकहे पन्नों को बॉलीवुड के सितारों की जुबानी।
2: जब मिलते थे आशा, मैं गानी तुम्हारी मन की भाषा, और कभी बहुत हंसाते थे तो मैं, दादा आवाज खराब हो रहा है हंस हंस के, मैं गा नहीं पा रही हूँ, मुझे, मैं बोलते थे मैं यही चाहता हूँ ना, तू नहीं गाए मैं अच्छा गाऊं।
0: आज सारा दिन किशोर दा की कहानी सितारों की जुबानी।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.
1: Don't trick.
2: Brought to you by
1: Nanatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alcohol.
3: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 11:12. दैट इज 11:12. स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास.
4: मैं हूँ अदा शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3.

0: कैसा लगेगा अगर कोई कहेगा कि तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं और आप आइसक्रीम खा रहे होगे। हाँ जी, आइसक्रीम के अंदर मिर्ची लग सकती है। अब आपको पहले ऐसा होता था ना कि आप खाने के बाद डिजर्ट खाते थे क्योंकि जो मिर्ची ऐसे ऐसे लग रही होती थी उसको कंट्रोल करना होता था, लेकिन अब आपको मिर्ची लगेगी आइसक्रीम खा के। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जो आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रही हूँ। एंड आप लोगों के ओपिनियंस क्या है जानने में जो है बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ, क्योंकि और कोई आपसे आपकी दिल की बात, आपका ओपिनियन जानना चाहे या ना जानना चाहे, आपकी कशिश हमेशा तत्पर रहती है। अब देखिए यार, एक ब्रांड है जिन्होंने गार्लिक ब्रेड फ्लेवर की आइसक्रीम जो है वो लॉन्च कर दी है। बिरयानी फ्लेवर की आइसक्रीम देख ली, पैरासिटामोल फ्लेवर की आइसक्रीम देख ली, चाय फ्लेवर की आइसक्रीम देख ली, अब इस दुनिया में देखने को बचा क्या है। अच्छा हुआ मेरे चश्मे का पावर जो है वो इतना ज्यादा है, चश्मा उतार दूंगी ये सब कुछ दिखेगा ही नहीं। वैसे आज बातचीत हम करने वाले हैं इस बारे में कि यार ऐसी और कौन कौन सी चीजें हैं जिनके फ्लेवर की आइसक्रीम बनाई जा सकती है एंड हमारे थोड़े बहुत चांसेस होंगे खाने के। तो बताइए मुझे 3311063 पर कि आपकी ऐसी फेवरेट चीज कौन सी है जिसके फ्लेवर की आइसक्रीम बन सकती है। जैसे मेरे जो दादाजी है ना वो क्या करते हैं कि वनीला आइसक्रीम में गुलाब जामुन मिलाकर खाते हैं। जब भी हम किसी शादी में जाते हैं तो वहां पर वो यही काम करते हैं एंड गरम गरम गुलाब जामुन को ठंडी ठंडी आइसक्रीम पे डाल के खाते हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि काश कोई ब्रांड अगर ऐसी ऐसा कॉम्बिनेशन हमें दे देता तो हमें शादियों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। So, बताइए आपका कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है फेवरेट आइसक्रीम का, बिकॉज गर्मी जो है वो एट इट्स पीक चल रही है। सो आपके फ्लेवर से किसी और का भला हो जाएगा। कॉल कीजिए मुझे या फिर आप मैसेज भी कर सकते हैं 3311063 पर। तो जल्दी जल्दी अपना फोन उठाइए, व्हाट्सएप कीजिए आपका फेवरेट फ्लेवर आइसक्रीम का, जो भी आप बनाना चाहते हैं, कस्टमाइज करना चाहते हैं। आपको लगता है कि कशिश यार अब इतना कुछ देख लिया है तो इस फ्लेवर की आइसक्रीम भी हो ही जानी चाहिए। अब देखिए आइसक्रीम की बात करते करते मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कूल तो होना चाहिए हमारी लाइफ में, इसीलिए कूल सॉन्ग ऑफ द आवर आपके रेडियो सेट्स पर। शो मी द ठुमका गाना आ रहा है, इसे एंजॉय कीजिए और बाकी आपकी कशिश के साथ गहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

गाने का नाम खुदा हाफिज। अभी अनजाना अनजाने हम हो जाएं अगर कुछ आइसक्रीम फ्लेवर्स से तो मजा ही आ जाए। कुछ दिन पहले तनीजा ही अपने शो पे जो है वो बता रही थी कि प्याज फ्लेवर की आइसक्रीम जो है वो मार्केट में आ चुकी है। उसके बाद मुझे लगा कि यार इससे बुरा मैं क्या ही देख लूंगी। तभी आज मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने देखा कि एक ब्रांड जो है वो गार्लिक ब्रेड, क्योंकि उनकी ब्रांड की बहुत फेमस है, तो उसी ब्रांड के टेस्ट को मेंटेन रखने के लिए उसी फ्लेवर की एक आइसक्रीम भी वो लॉन्च कर रहे हैं। और क्या देखना बचा है। तो मैंने बस आप लोगों से यही पूछा था कि अब और कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम जो है हमें मार्केट में दिख सकती है। सो एक भाई साहब है, उन्होंने मुझे ऑडियो नोट भेजा है। उनका ऑडियो नोट जो है वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा, तो मैं आपको नहीं सुना पा रही, लेकिन मैं बता देती हूँ उन्होंने क्या बोला है। तो उन्होंने ये बोला है कि यार कशिश देखो, हमने जो है हर फ्लेवर की आइसक्रीम देख ली है, लेकिन अभी तक आलू फ्लेवर की आइसक्रीम हमें देखने को नहीं मिली है। सो अगर वो भी आ जाती मार्केट में तो मजा आ जाता। अब इन्होंने ये भी कहा था कि आलू और प्याज फ्लेवर की आ चुकी है सर, आपने शायद अभी तक ट्राई नहीं करी है, वैसे ट्राई ना ही करे तो बेहतर है। लेकिन इनका कहना है कि आलू फ्लेवर की आइसक्रीम जो है वो मार्केट में आनी चाहिए। अब मेरा सवाल ये है कि आलू क्या, आपको कौन से वाले आलू चाहिए? आपको जो है जीरा आलू चाहिए, या आप ग्रेवी वाले आलू चाहिए, आपको आलू टमाटर चाहिए, या आपको पानी पूरी वाले आलू चाहिए, या फिर आपको आलू के पराठे वाले आलू चाहिए? कौन से आलू की आइसक्रीम जो है आप चाहते हैं खाना, बताइए मुझे। बाकी देखिए यार, शौक तो मुझे तब लगा था जब जो हमारी कोल्ड की दवाई होती है ना, उस दवाई वाली जो एक आइसक्रीम है वो मैंने एक यू नो शॉप के मेन्यू में देखी थी, पैरासिटामोल आइसक्रीम। एंड आई वाज लाइक कि ब्रो ये क्या हो रहा है, मतलब जिस चीज़ को खाने से सर्दी होती है। एंड मैं सोच रही थी कि यार अब सर्दी हो रही है तो मैं आइसक्रीम नहीं खाती हूँ, तो मुझे सर्दी भी होगी एंड साथ साथ में दवाई के फायदे भी मिल जाएंगे। वाओ कि क्या सोच के बनाया आपने। फिलहाल जब भी मैच मूवी का एक बहुत ही प्यारा वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, इस गाने को एंजॉय कीजिए और आपकी कसूस के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: ऑफकोर्स फिर ऐसी रात नहीं आएगी क्योंकि आज है किशोर दा की बर्थ एनिवर्सरी, तो आज उनके बारे में कुछ स्पेशल बातें करना तो देखो बनता है ना। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ मैं लाइफ मस्त है, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रही हूँ। एंड इस सेगमेंट में मैं आपको हर रोज आके एक मूवी रिकमेंड करती हूँ, लेकिन आज किशोर दा के बर्थडे पर मतलब बर्थ एनिवर्सरी पर जो है हम कुछ बहुत ही स्पेशल करने वाले, हम उनकी बेस्ट बेस्ट बेस्ट बेस्ट बेस्ट 5 मूवीज जो है आपको बताने वाले हैं, जो आप अपनी फैमिली के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर सकते हो। अब देखो तो यार वैसे तो उनकी सारी मूवीज ही अच्छी हैं, लेकिन मैं कुछ पिक करके लाई हूँ। सबसे पहली का नाम है चलती का नाम गाड़ी, 1958 में ये मूवी आई थी। 3 भाइयों की कहानी है और क्रेजी कॉमेडी है, जरूर से देखना। हाफ टिकट सेकेंड मूवी का नाम है, 1962 की ये मूवी है एंड इसमें जो है छोटे छोटे बच्चे जो है वो एक नाटक करते हैं, एक प्ले करते हैं। उसके बाद ये जो थर्ड मूवी है इस ये मैं पहले भी आपको रिकमेंड कर चुकी हूँ, मूवी का नाम है पड़ोसन, 1968 की ये मूवी है। भोला का बहुत इनोसेंट सा कैरेक्टर है एंड बहुत ही क्यूट लगता है। उसके बाद नेक्स्ट मूवी है हमारी झुमरू, 1961 की मूवी है, एक म्यूजिकल रोम कॉम है। किशोर दा ने जो है केयर फ्री अपना जो रूप है वो दिखाया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मूवी है दूर गगन की छाँव में, नाम बड़ा है लेकिन मूवी जो है बहुत ही अच्छी इमोशनल ड्रामा है। सो 1964 की ये मूवी आप इंजॉय कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और आज सारा दिन किशोर दा के अमेजिंग गाने आपको सुनने को मिलेंगे रेडियो ऑलिव पर, सो स्टे ट्यून्ड रहिए। फिलहाल ऑलिव फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर यानी एकदम नया नवेला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर टॉक्सिक मूवी से, इंजॉय कीजिए और वापस लौट के आइए फिर और बातें कंटिन्यू रखेंगे।
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर
2: ये गाना,
0: मैं हूँ आपकी कशिश, स्टे ट्यून रहिए और मेरे साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो वाले पर। और देखिए यार, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब तो सारे बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस सब ना बिल्कुल सेम दिखते हैं। मतलब अगर आप उन लोगों का जो है चेहरा अगर किसी फोटो में ब्लर कर दो तो आप उनके फैशन से समझ ही नहीं पाओगे कि ये कौन सा एक्टर है, क्योंकि सब लोग बिल्कुल सेम कपड़े पहनते हैं। एंड एक्टर्स की मैं बात क्या करूँ, इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स भी सेम कपड़े पहनते हैं। और अगर आपका थोड़ा सा फैशन सेंस अच्छा है, आप भी उसको बहुत ही अच्छी तरीके से मैच कर सकते हो। कुछ फर्क आजकल ज़्यादा रह नहीं गया है, लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था कि आप एक्टर की शर्ट देख के अगर किसी दुकान में है तो बता देते थे, अरे ये तो इस एक्टर की है, अरे ये तो इस एक्टर से इंस्पायर्ड है, अरे ये हेयर स्टाइल तो मतलब हेयर स्टाइल्स के नाम जो है वो एक्ट्रेसेस पे रखे जाते थे। तो देखिए आज जो है किशोर दा की बर्थ एनिवर्सरी पर हम किशोर दा के वार्डरोब में जरा जो है एंट्री मार रहे हैं एंड ये देख रहे हैं कि वो उस टाइम पर क्या ऐसा आइकॉनिक पहना करते थे जो आज के टाइम पे भी यानी 2026 में भी रिलेवेंट है और आज के टाइम पर भी ये फैशन वापस लौट के आ चुका है। सो जितने भी मेरे गाइज लिसनर्स हैं यानी लड़के इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, आपके लिए आज जो है फैशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो देखिए सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं, सो वाइड कॉलर्स किशोर दा काफी पहना करते थे। सो आप आज भी अपनी ओवरसाइज्ड शर्ट्स के साथ या फिर अपनी फॉर्मल जो है शर्ट्स के साथ वाइड कॉलर स्टैंड आउट करने के लिए जो है वो यू नो ट्राई कर सकते हो। एंड अगर मैं बात करूं ओवरसाइज टिंटेड ग्लासेस की, यानी वो जो ब्लैक का टिंट, ग्रे का टिंट, ब्लू का टिंट वाले बड़े बड़े ह्यूज ग्लासेस होते हैं ना, वो इस वक्त काफ़ी यू नो एंट्री मार चुके हैं। उसके बाद बोल्ड फ्लोरल अगर मैं प्रिंट्स की बात करूं, सो काफ़ी बार ना मतलब बीच में अभी जो टाइम आया था उसमें लड़के काफ़ी बेसिक कपड़े पहनने लग गए थे, लेकिन किशोर दा अपने टाइम पे फ्लोरल्स पहना करते थे एंड वो अब वापस एंट्री मार चुका है फैशन की दुनिया में। सो गाइज टेक नोट्स फ्रॉम किशोर दा के स्टाइल से जो है आप नोट्स लीजिए एंड अपने फैशन गेम को हाई कीजिए। फिलहाल किशोर दा की बर्थ एनिवर्सरी पे उनकी कुछ कहानियां हम आपको सुना रहे हैं और उनके बहुत अमेजिंग अमेजिंग गाने आपके लिए लेकर आए। सो वॉल्यूम बढ़ाइए, किशोर दा की कहानी सितारों की जुबानी जो है वो एंजॉय कीजिए एंड उसके बाद किशोर दा की आवाज में पल पल दिल के पास गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट पर। एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
1: गाना सीखा नहीं लेकिन सुनने वालों को संगीत का जुनून सिखा दिया। आवाज बदली, अंदाज बदला, संगीत के उसूलों को तोड़ा और अपनी किस्मत बदली। आइए आज किशोर कुमार की बर्थ एनिवर्सरी पर खोलते हैं उनकी जिंदगी के कुछ अनकहे पन्नों को बॉलीवुड के सितारों की जुबानी।
2: मेरा फेवरेट गाना उन दिनों होता था जिंदगी की यही रीत है हार के बाद जीत का। अदा ने गाना शुरू किया, जिंदगी की यही रीत है। मैंने कहा मेरा फेवरेट गाना, नेक्स्ट लाइन गाई तो कुछ थोड़ा चेंज करके गाए थोड़े ऐसा कुछ किया। मैंने कहा यार ये तो ट्यून तो कुछ और है, शाम को अगर गाएंगे तो सब लोगों को पता लग जाएगा कि
3: गलत गाया।
2: मेरे मुंह से मुश्किल से मैं कह रहा हूँ दादा दादा दादा, तो दादा रुक गए। हाँ बोलिए कौन है, आप कौन? अनुपम खेर। सब कुछ और निकलना, मैंने कहा दादा आप गलत गा रहे हो, किशोर कुमार को मैं बोल रहा हूँ आप गलत गा रहे हो, मैं उनको गा के सुना रहा हूँ। मैंने कहा दादा ओरिजिनल में आपने गाया जिंदगी की यही रीत, अच्छा जिंदगी की है, और ओरिजिनल अब कैसे गा रहा हूँ? तो मैंने कहा अब आप गा रहे हो जिंदगी की समथिंग, अच्छा अच्छा ओरिजिनल किसने गाया? मैंने कहा आपने, और ये कौन गा रहा आप, आपके बाप का क्या?
1: आज सारा दिन किशोर दा की कहानी सितारों की जुबानी।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: तो जी वक्त हो गया है आपको वक्त बताने का. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 12:16. दैट इज 12:16. स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास.
2: जॉय अलुकास ब्रिंग्स यू द जॉय ऑफ समर. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alukas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alukas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alukas, world's favorite jeweler.
3: Hi everyone. मैं हूं अरमान मलिक. अरमान मलिक 106.3 FM रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
0: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: देखिए आप लोग हैं मेरे सर आंखों पर, आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे मैसेज जो है पढ़कर मेरा दिन बेटर हो जाता है। वेलकम टू 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कसर शो, आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, जो आप और आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रहे हैं। अब देखिए यार, आपकी लाइफ को मस्त बनाते बनाते मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि आपकी जो कार है वो भी यही डिजर्व करती है, उसी को, उसको भी वो केयर, उसको भी वो पैम्पर होना जो है वो चाहिए अपनी लाइफ में, तो क्यों नहीं मिल पा रहा है। हम रोज अपनी गाड़ी को दौड़ाते हैं लेकिन उसकी केयर करना भूल जाते हैं। सो इट्स टाइम टू गिव योर कार द लव इट डिजर्व्स। स्ट्रेट अवे पहुंचो वैल्वोलिन एएमटीसी प्रीमियम क्विक सर्विस पर जो सलवा रोड पे आपको मिलेगा। इसमें जो है आपकी गाड़ी को 150 इयर्स का जो ग्लोबल ट्रस्ट कंपनी होल्ड करती है वहां पर उसकी डिजर्व केयर जो है वो मिलने वाली है। अब देखिए यार, जेन्युइन वैल्वोलिन प्रोडक्ट जो है वो आपको मिलेंगे, प्रीमियम क्वालिटी फिल्टर्स आपको मिलेंगे, और सबसे कूल चीज तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ, ANPR पावर डिजिटल कार पासपोर्ट जो है वो आपकी गाड़ी को मिल सकता है, जहां पर आपकी गाड़ी की पूरी सर्विस हिस्ट्री आपके फिंगर टिप्स पे होगी, यानी आपको नो पेपर वर्क का झंझट। तो यार देखो, देरी किस बात की है, अभी चले जाओ सलवा रोड पर, एंड आप कॉल भी कर सकते हो 7765-5954 पर, 7765-5954 पर। अपनी कार की यार थोड़ी सी बेटर केयर करो और कूल बन जाओ। फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द आर आ रहा है आपके रेडियो सच पर, इसे एंजॉय कीजिए, और आने के बाद जरा बॉलीवुड के बारे में एक अपडेट मैं आपको देने वाली हूँ। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आर।

मकबूल मूवी से ये ट्रैक बहुत ही खूबसूरत गाना आपके रेडियो सेट्स पर आया। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कसुशन। शो आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ मस्त है, जो आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रही हूँ। अब देखिए आपकी लाइफ और ज्यादा मस्त हो जाएगी जब आपको ये खबर पता चलेगी कि इमरान खान, हाँ जी जाने तो ये जाने ना वाले जो है, वो अपना कम बैक कर रहे हैं। हाँ जी, नेटफ्लिक्स की एक रोम कॉम मूवी के साथ वो अपना कम बैक करने वाले हैं, यानी अब हमें जय और अदिति वाला फील जो है वो वापस मिलेगा। एंड मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मेरी ब्रदर की दुल्हन में मुझे इमरान खान इतने अच्छे लगे थे कि मैं उनकी मूवीज़ का वेट कर रही थी, लेकिन पता नहीं कहाँ चले गए थे वो। कोई बात नहीं, अब वापस आ रहे हैं। आप कितने एक्साइटेड हैं आप मुझे बता सकते हैं? फिलहाल आपको तो अगले गाने के लिए बहुत एक्साइटेड होना चाहिए, खुदा जाने गाना बचना ए हसीनो मूवी से आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर। इन्जॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जी।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर.
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है. ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ.
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है.
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है.
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए. अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं. एक्सपीरियंस

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

क्रिसमस मूवी से ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलिव पर. मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे थे. लाइफ मस्त है लेकिन अब मेरे यहाँ से जाने का आपको टाटा बाय बाय बोलने का वक्त आ गया है. तो मैं चलती हूँ, वही कहूंगी जो हर रोज कहती हूँ कि गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाइएगा, खाना खाते रहिएगा, पानी पीते रहिएगा, सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलना एंड हमें जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना. रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल पर बहुत अमेजिंग कॉन्टेंट जो है वो आ रहा है. सो अमेजिंग गाने एंजॉय करते रहो और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास, टाटा बाय बाय, टेक केयर.

0: गाना सीखा नहीं, लेकिन सुनने वालों को संगीत का जुनून सिखा दिया। आवाज बदली, अंदाज बदला, संगीत के उसूलों को तोड़ा और अपनी किस्मत बदली। आइए आज किशोर कुमार की बर्थ एनिवर्सरी पर खोलते हैं उनकी जिंदगी के कुछ अनकहे पन्नों को बॉलीवुड के सितारों की जुबानी।
1: किशोर दा एक दिन आए और मुझे बोलते हैं, चल आज एक काम करते हैं, हम लोग गाना पीछे से गाते हैं। I felt very offended। पीछे से गाएंगे मतलब? कि दादा मतलब आप कह रहे हैं? नहीं नहीं, आज किशोर ये गाना पीछे से गाएगा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे दिमाग कह रहा था कहीं ना कहीं ये क्या कहने जा रहा। मुझे बस शॉक, मुझे शॉक ये माइक पर आवाज चल रही है। चलो चलो ट्रैक लगाओ, पीछे से गाऊंगा। तो सब कंफ्यूज, पीछे से पीछे से पीछे से पीछे। सडनली ना दादा डेड, ही वाज अ जीनियस। ही सेड घबराओ मत, पीछे का मतलब आप क्या सोच रहे हो? नहीं हम कुछ नहीं सोच रहे, पीछे का मतलब जो डबिंग करने आया हूँ मैं, मुखरा है ना इंट्रोडक्शन का, वो मैं नहीं गाऊंगा। मैं पहला अंतरा भी नहीं गाऊंगा, मैं सेकंड अंतरा भी नहीं गाऊंगा, जो लास्ट मुखड़ा आएगा मैं पहले वो गाऊं। उसको कहते पीछे से गाना। मैं लो दादा ऐसा क्यों? इसका मतलब इसलिए क्योंकि सब लोग हैरान होंगे कि दादा गाते गाते थके नहीं, एंड तक फ्रेश कैसे हैं। तो मतलब ही वांटेड हिज फ्रेश वॉइस टू कम इन द एंड, ही वाज जीनियस।
0: आज सारा दिन किशोर दा की कहानी सितारों की जुबानी।

0: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
1: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
0: योर स्पेशल ऑफर?
1: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
0: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
1: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक, 106.3 FM रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास।
4: ऑलिव म्यूजिक मैराथन, एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक गाने।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: Life 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आज में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
2: मॉर्निंग्स एंड नाइट

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: चार्ज हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुदेव रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

0: आप सभी का स्वागत है स्वागत है स्वागत है स्वैग के साथ स्वागत है। यह है रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे चलिए शुरू करते हैं ऑलिव रिचार्ज। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और अगर बांध रखी है तो और कस के बांध लीजिए, क्योंकि भाई यहां पे हम एक जर्नी शुरू करने वाले हैं जहां पे हम गाने सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे, ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करेंगे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताएंगे। तो तैयार हो जाइए आज के इस जर्नी के लिए। और आज एक काफी स्पेशल डे भी है, आज किशोरदा का बर्थ एनिवर्सरी है, तो चलिए आज किशोरदा को भी सेलिब्रेट करेंगे। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: गाना सीखा नहीं लेकिन सुनने वालों को संगीत का जुनून सिखा दिया। आवाज बदली, अंदाज बदला, संगीत के उसूलों को तोड़ा और अपनी किस्मत बदली। आइए आज किशोर कुमार की बर्थ एनिवर्सरी पर खोलते हैं उनकी जिंदगी के कुछ अनकहे पन्नों को बॉलीवुड के सितारों की जुबानी।
2: किशोरदा माइक के सामने खड़े हुए उनका सेक्रेटरी इशारा करता था पैसे आए कि नहीं, और फेमस स्टूडियो तारदेव में रिहर्सल की, माइक के सामने अभी टेक किया, तब तक अब्दुल कहीं नजर नहीं आ रहा है, इशारा नहीं आया कि पैसे मिले। तो किशोरदा बोले एक मिनट, बोल के जो बाहर निकले, गाड़ी में बैठे, गाड़ी शुरू की, स्टार्ट की और निकल गए। अब्दुल देख रहा है कि किशोरदा जा रहे, तो अपनी गाड़ी में बैठे अब्दुल उनको हॉर्न मार रहे, और जितना ये हॉर्न मार रहे उतना किशोरदा स्पीड बढ़ा रहे, और ये हॉर्न मारे जा रहा। फाइनली बैंड्रा सिग्नल में कहीं वो रोक पाया उनकी गाड़ी, उतर के, किशोरदा क्या हुआ, घर क्यों भाग क्यों रहे? अरे आज तूने इशारा नहीं किया, कैसे इशारा करूं, प्रोड्यूसर आप ही तो है।
1: आज सारा दिन किशोरदा की कहानी सितारों की जुबानी।

0: आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे भाई मैं एक चीज बताना चाहूंगा, एक्चुअली मैं नहीं बताना चाहूंगा, ये अमित कुमार जी ने, जो किशोर कुमार जी के बेटे हैं, बड़े बेटे हैं, उन्होंने एक बार एक बात बोली थी। किशोर जी की बात जो है उन्होंने बताई थी एक रियलिटी शो में, वो बात यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूंगा। और मैं बताना चाहूंगा कि किशोरदा का प्रवचन जो उस टाइम पे उन्होंने किया है वो कितना करेक्ट था, और अभी भी जो उन्होंने बात बोली है वो सही बैठती है। तो चलिए वो बात सुनते हैं जो अमित जी ने बोली है।
1: बिफोर ही वेंट अवे, जब लिखो मैं एक ही दिन जाऊंगा, उसके बाद लोग ढूंढेंगे मुझे, और जिसके भी गले में थोड़ी बहुत झलकियां मिल जाए मेरे तरह, लोग पागल हो जाएंगे, लेकिन मैं नहीं मिलूंगा।
0: बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि सालों बीत चुके हैं किशोर दा के जाते हुए, मगर फिर भी उनके जैसा कोई नहीं, क्योंकि किशोर कुमार जैसे वही थे, वही हैं और वही रहेंगे। और यही बात बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
3: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

कभी सोचा है कि यार 10 मिनट का काम दिया है मगर 2 घंटे का डेडलाइन है तो वो 2 घंटे में ही पूरा होता है, 10 मिनट नहीं लेता है, ऐसा क्यों होता है? आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे हम बात कर रहे हैं पार्किंसंस लॉ की। तो जैसे कि मैंने बोला, 2 घंटे का डेडलाइन अगर दिया है काम के लिए और काम सिर्फ 10 मिनट का है तो वो काम 2 घंटा ही लेगा, क्योंकि वर्क एक्सपेंड्स अकॉर्डिंग टू द टाइम। अगर आप अपने आप को छोटा डेडलाइन देते हैं तो उसके अंदर हम काम पूरा करने की कोशिश करते हैं, मगर जितना हम डेडलाइन बड़ा रखते हैं काम उसके हिसाब से जितना भी छोटा हो बढ़ता चला जाता है। और यही बात जो है प्रोडक्टिविटी को मेजर करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, अपने प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई काम दिया है आप थोड़ा सा कम डेडलाइन रखिए उसके लिए, ताकि इजीली काम जो है आपका पूरा हो जाए। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे मैं बताना चाहूंगा एक ऐसे बढ़िया जगह के बारे में जहां पे आप अपने गाड़ी को लेके जा सकते हैं ताकि आपके गाड़ी को ट्रस्टेड केयर मिले जो आपकी गाड़ी डिजर्व करती है। मैं बात कर रहा हूँ वैल्वोलिन AMTC सलवार रोड के बारे में, जहां पे आप जा सकते हैं और काफी बढ़िया ट्रीटमेंट आपकी गाड़ी को मिलेगी, एकदम बढ़िया प्रीमियम क्विक सर्विस वहां मिलेगी। उसके साथ साथ वहां पे जो ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स हैं वो सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ल्यूब्रिकेंट्स यूज करते हैं, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं ताकि आपकी गाड़ी का केयर जो है टॉप नॉच रहे। उसके साथ वहां पे है डिजिटल कार पासपोर्ट, ANPR टेक्नोलॉजी से कंप्लीट हिस्ट्री जो है मिल जाएगी मेंटेनेंस की। और यही बात बताते हुए मैं एक और कैच बता दूं यहाँ पे कि वहां जाके अगर आप ऑयल चेंज कराते हैं तो आपको एक काफी कूल वाल्वोलिन का मर्चेंडाइज मिलेगा। तो इंतजार किस बात का है, सीधा जाइए वहां पे। एक नंबर भी मैं देता हूँ।

नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, और कॉल करते वक्त बोलना कि मुझे सुदेव भाई ने बोला था रेडियो ऑलिव से कॉल करने के लिए। 7765 5954 7765 5954। तो आज ही कॉल कीजिए, आज ही जाइए वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड पर। और यही बात बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: हर दोपहर 2 से 5 विथ आरजे सुबे रेडियो ओनली 106.3 FM पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
3: Gana sikha nahi, lekin sunne walon ko sangeet ka junoon sikha diya. Aawaz badli, andaaz badla, sangeet ke usoolon ko toda. और अपनी किस्मत बदली. आइए आज किशोर कुमार की बर्थ एनिवर्सरी पर खोलते हैं उनकी जिंदगी के कुछ अनकहे पन्नों को बॉलीवुड के सितारों की जुबानी.
4: एक बात बहुत डरते डरते झिझकते झिझकते कहना चाहूंगा, किशोर कुमार ने जब भी किसी के साथ गाना गाया है तो आपको एक फर्क महसूस हुआ है, किसी के भी साथ हो, मेल सिंगर हो या फीमेल सिंगर. अगर एक ऐसा गाना हुआ है कि जिसका एक मेल वर्जन है ये एक फीमेल वर्जन, किशोर कुमार का मेल वर्जन है किसी और सिंगर का मेल वर्जन, तो फिर उसमें किशोर कुमार का ही गाना चला है, वो दूसरा वर्जन नहीं चला.
3: आज सारा दिन किशोर दा की कहानी सितारों की जुबानी.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو اولیو 106.3 ایف ایم جیو بنداس.
2: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
3: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर.
2: योर स्पेशल ऑफर?
3: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है. ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ.
2: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है.
3: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है.
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए. अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
4: हाय गाइस, दिस इज वाणी भानुशाली.
5: हे, दिस इज लियाना डिक्रूज.
6: दिस इज मी ऋतिक रोशन.
7: हाय, आई एम आलिया भट्ट.
8: हाय, मैं हूं विवेकानंद ओबेरॉय एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव जियो बिंदास.

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

आप सभी का एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पैरेटो प्रिंसिपल या फिर 80-20 प्रिंसिपल। तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से 80% ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो होते हैं 20% ऑफ कॉजेस के कारण। ठीक है, अब एग्जांपल उसका हम बिजनेस सेल्स में ले सकते हैं, सॉफ्टवेयर बग्स में ले सकते हैं, डेली प्रोडक्टिविटी में ले सकते हैं। अगर हम बिजनेस रेवेन्यू की बात करें तो एक कंपनी के 80% ऑफ टोटल रेवेन्यू जो है उसके 20% कस्टमर या क्लाइंट बेस से आते हैं। सिमिलरली अगर हम डेली वर्क में देखें तो 20% हमारा जो डेली टास्क है वो हमारे 80% ऑफ वैल्यूएबल आउटपुट को प्रोड्यूस करता है। पर्सनल लाइफ में अगर हम झांके तो हम अपने कबोर्ड में से, अपने क्लोजेट में से 20% कपड़े 80% टाइम पहनते हैं, बाकी 80% कपड़े हम बहुत कम ही पहनते हैं। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो बेसिकली इसका फंडा यही है कि लाइफ के जो मेजर आउटपुट्स हैं या फिर लाइफ के जो मेजर माइलस्टोन्स हैं वो 20% एफर्ट से आते हैं। तो वो 20% कौन से हैं उसे फिगर आउट करना और उस पर ज्यादा फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही बात बताते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

भाई मेरे जो दोस्त हैं इंडिया में, वो मेरे से पूछते हैं कि भाई ऐसी कौन सी चीज है जो कतर में जाके तूने सीखी या फिर तेरे लाइफ का हिस्सा बनी, जो तू मतलब कभी भी हटा नहीं सकता अपने लाइफ से। तो मैंने बोला वो है परफ्यूमरी के बारे में, जो मेरा एक चाहत था, जो एक हिडन एक लेयर था मेरा, वो बाहर आया है। और मेरे जो कलीग्स हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि मुझे परफ्यूम्स बहुत पसंद है, बखूर बहुत पसंद है, इन सब चीज़ों का मैं दीवाना हूँ। तो बेसिकली अगर मैं इंडिया कभी जाता हूँ तो हमेशा मैं एक बखूर लेके जाता हूँ घर के लिए, और मेरे घर में भी मैंने लोगों को आदत लगवा दी है। तो मम्मी मुझे मैसेज करती जो उस टाइम लेकर आया था ना, वो लेकर आई हूँ फिर से करके। और ये एक आदत है जो मैंने अपने बारे में रियलाइज किया है, डिस्कवर किया है, जो मेरे अंदर थी, ये पसंद मेरे अंदर थी, मगर यहाँ पे आके मुझे मौका मिला है उसको डिस्कवर करने का और एक्सप्लोर करने का। तो ऐसी कौन सी आदत है जो कतर ने आपको दी है, या फिर एक कौन सी चीज है जो कतर ने आपको दी है और उसके बिना आप रह नहीं सकते, बताइए मुझे। और जल्दी जल्दी मैसेज कीजिए 3311063 पर। और यही बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे मैं एक चीज आपको याद दिलाना चाहूंगा। आज शाम को गाड़ी चलाते हुए घूम रहे हो तो सीधा जाइए सलवा रोड में, वहां पे है वैल्वोलिन AMTC। वहां जाके आप अपने गाड़ी को ऐसा केयर दे सकते हैं जो शायद आपने कभी दिया होगा। मैं कहता हूं कि भाई आपकी गाड़ी जो है टॉप नॉच केयर डिजर्व करती है, और वो टॉप नॉच केयर देने के लिए वैल्वोलिन AMTC में जो है काफी बढ़िया ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स हैं, जो सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ल्यूब्रिकेंट्स, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं ताकि आपकी गाड़ी का केयर बिल्कुल बढ़िया रहे। उसके साथ साथ वहां पे है डिजिटल कार पासपोर्ट, यानी कि ANPR टेक्नोलॉजी से गाड़ी की कंप्लीट मेंटेनेंस हिस्ट्री जो है मेंटेन कर सकते हैं। एंड बढ़िया कैच ये है कि वहां जाके अगर आप ऑयल चेंज कराते हैं तो आपको एक बहुत ही कूल मर्चेंडाइज मिलेगा वैल्वोलिन का। और एक नंबर मैं देता हूँ आपको, नंबर आप नोट कर लीजिए और कॉल करना, और कॉल करते वक्त बोलना कि सुदेव भाई ने बोला था कॉल करने के लिए रेडियो ऑलिव से। तो नंबर है 7765 5954, नंबर है 7765 5954। तो आज ही कॉल कीजिए, आज ही विजिट कीजिए वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड, और अपने गाड़ी को मच डिजर्व्ड वो ट्रस्ट और केयर दीजिए, और उसके साथ साथ आप भी खुश रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: गाना सीखा नहीं लेकिन सुनने वालों को संगीत का जुनून सिखा दिया। आवाज बदली, अंदाज बदला, संगीत के उसूलों को तोड़ा और अपनी किस्मत बदली। आइए आज किशोर कुमार की बर्थ एनिवर्सरी पर खोलते हैं उनकी जिंदगी के कुछ अनकहे पन्नों को बॉलीवुड के सितारों की जुबानी।
2: जब कभी किशोर गाता था और मन से गाता था, जो उसकी रेजोनेंस थी वो किसी के नहीं, आज तक नहीं, डीप आवाज में जब गाता था, हालांकि ट्रेंड सिंगर नहीं था।
1: आज सारा दिन किशोर दा की कहानी सितारों की जुबानी।

भाई आज का दिन बहुत स्पेशल है, संगीत प्रेमियों के लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज किशोरदा का जो है बर्थ एनिवर्सरी है और आज के दिन हम उन्हें याद करते हैं, उनके गानों को याद करते हैं, उनकी कहानियों को याद करते हैं। परीक्षा ने ऑलरेडी अपने शो में बहुत सारी कहानियां जो है आपके साथ शेयर की हैं। यहाँ पे मैं कहानी कुछ नहीं बोलूंगा, बस छोटी सी भेंट मेरी तरफ से जो है वो मैं शेयर करना चाहूंगा। एक छोटा सा गाना मैं जो है किशोरदा का गाया हुआ अटेम्प्ट करना चाहूंगा, और मैं पहले ही बता दूं कि भाई मैं गुरु मानता हूं उन्हें, और बहुत ही बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं वो, और उस लेवल के आर्टिस्ट मुझे लगता है फिर शायद नहीं आए हैं हमारे इंडस्ट्री में। तो उनको याद करते हुए एक छोटा सा ट्रिब्यूट मेरी तरफ।

0: तो छोटी सी एक भेंट हमारी तरफ से, छोटा सा एक अटेम्प्ट था ये। अगर आपको अच्छा लगा तो आप जरूर मैसेज कीजिए मुझे 3311063 पर। अच्छा नहीं भी लगा तो मैसेज कीजिए, बोलो मुझे, ऑनेस्टली बोलो कि सुदेव भाई सुरवर ठीक करो थोड़ा ढंग से गाओ करके। आपके ऑनेस्ट फीडबैक्स का इंतजार है बिल्कुल। तो 3311063 पर मैसेज कीजिए। और यही बोलते हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदा।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: यार मुझे 10 GB फ्री मिला मेरे हाला रिचार्ज के साथ.
2: क्या कैसे?
1: बस रिचार्ज करो और तुम्हें फ्री डेटा या मिनट्स मिलते हैं. कल मुझे 50 फ्री मिनट्स मिले.
2: रोज मिलता है क्या?
1: हाँ रोज मिलता है.
2: मैं भी अपना हाला नंबर रिचार्ज कर रहा हूँ.
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
3: लगा और हो जा रिचार्ज.
0: Recharge Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas.
3: Olive Recharge.
4: This hour is brought to you by
5: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.

Welcome back. You're listening to Radio Olive 106.3 FM. मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे मैं ना एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा. देखिए, हम सबको ऐसी चीजें पसंद है जो हमें कंफर्ट देती है. वो कुछ गाने हो सकते हैं, खाने हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं, मूवीज हो सकती हैं. तो कुछ मूवीज ऐसी हैं जो मैं बार बार देखना पसंद करता हूँ, जो मेरी कंफर्ट मूवीज हैं. जब भी मुझे लगता है कि यार बहुत कुछ हो रहा है, बहुत शोर शराबा है, मुझे थोड़ा अपना टाइम चाहिए, तो मैं जाता हूँ उन मूवीज के पास, थोड़ा वक्त बिताता हूँ. उनमें से एक मूवी है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जो मुझे बहुत पसंद है. मैं बार बार रिविजिट करता रहता हूँ उस मूवी को. तो ऐसी कौन सी मूवी आपके लिए जो आपको कंफर्ट देती है, एक स्पेस देती है अपने आप के लिए? मुझे मैसेज कीजिए 3311063 पर और बताइए. फिलहाल यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास.

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: टफ काम और भी आसान. कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्नल ग्रुप नाउ.
2: ऑलिव लगा और हो जा रिचार्ज. ऑलिव रिचार्ज.
0: ऑलिव रिचार्ज. रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
2: ऑलिव रिचार्ज.
3: This hour is brought to you by
4: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

हैं, पार्टी अभी बाकी है, सिमरन आने वाली है, तो खुली बाहों से सिमरन का स्वागत कीजिए। जितना प्यार मुझे दिया है उतना और उससे ज्यादा प्यार सिमरन को दीजिए। और जाते जाते जाते आपसे ये दरख्वास्त है कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने खास लोगों का ख्याल रखिए और हमें जरा दुआओं में याद रखिए। फिर मिलेंगे कल दोपहर को 2 बजे, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास। रेडियो

लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिन

0: लेकर आ गई हूँ, लेकिन आपका दिन कैसा एक नंबर रहा कि नहीं रहा मुझे बताइए अपने पूरे दिन के बारे में। आपके गुड इवनिंग वाले मैसेजेस भी साथ में भेजिएगा 3311063 पर। इंतजार कर रही हूँ, वॉइस नोट भेजोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आज किशोर दा की बर्थ एनिवर्सरी है, हर घंटे आप उनके स्पेशल गाने सुन रहे हो, उनसे जुड़ी हुई स्टोरीज आपको सुनने के लिए मिल रही है, और कुछ बातें तो मैं भी आज आपको बताने वाली हूँ।
1: गाना सीखा नहीं लेकिन सुनने वालों को संगीत का जुनून सिखा दिया। आवाज बदली, अंदाज बदला, संगीत के उसूलों को तोड़ा और अपनी किस्मत बदली। आइए आज किशोर कुमार की बर्थ एनिवर्सरी पर खोलते हैं उनकी जिंदगी के कुछ अनकहे पन्नों को बॉलीवुड के सितारों की जुबानी।
2: तो जब मैंने आराधना का पहला गाना सुना, मेरे सपनों की रानी कब आओगी तुम, तो ऐसे लगा जैसे राजेश खन्ना खुद गा रहे, ऐसे लगा जैसे वो सामने खड़े हैं और वो गा रहे हैं और मैं उनको कॉपी कर रहा हूँ, या दो जान एक जिस्म हो।
1: आज सारा दिन किशोर दा की कहानी सितारों की जुबानी।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: हाय देयर फ्रेंड्स, दिस इज डीजे सुकेत। You're listening to Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindas.
0: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
2: Radio Olive, I'm the number one.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
4: सिमरन के साथ
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
6: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
7: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

बज के 21 मिनट स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं सिमरन कौर आपके ज्यादा थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू आप सबके मैसेजेस के लिए एक एक करके वो आप लोगों के मैसेजेस जो है वो मैं सुनती हूँ जो वॉइस नोट भेजे हैं और देखती

0: आज किशोर दा की बर्थ एनिवर्सरी है, कुछ खास बातें मैं आपको किशोर दा के बारे में जो है वो बताती हूँ। सो किशोर दा को पौधों से, ट्रीज से बहुत ज्यादा प्यार था। इतना प्यार था कि उनको लगता था कि वो उनके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और उन्होंने उनको नाम भी दे रखे थे। और उनको बड़ा ऐसा होता था कि भाई यार मेरे घर पे कोई आए ना इंटरव्यू के लिए, फालतू अनवांटेड गेस्ट थे, वो बहुत ज्यादा उनको चिड़ होती थी। इसलिए उन्होंने अपने लिविंग रूम में ना स्कल्स, बोन्स और रेड लाइटिंग वगैरह ऐसा सिस्टम करके रखा था कि अगर उनके लिविंग रूम में कोई आए और बैठे और देखे, उनका मन ही ना करे यू नो इंटरव्यू करने का या बात करने का। सो मतलब फालतू लोग उनके घर पे ना आए, तो उनको मुझे लगता है कि पीस में रहना, अकेले रहना, अपने आप में रहना बहुत ज्यादा पसंद था। और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको पूरा शो है अभी तो बाकी, इन बिटवीन बताती रहूंगी। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव को, कहते रहिए जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

बहुत सारे थैंक यू आए इस गाने के लिए। अजी गाने तो अच्छे बजाते हैं हम। 5:33 55 सेकंड स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं और भी गाने हैं।

आई लव यू तो बात की बात होती है, पहले आप डेट करते हो, आप किसी से मिलते हो, आपको जानना पहचानना आपका जो है वो होता है. तो नॉर्मली जब आप किसी से मिलने जाते हो उसको डेट बोलते हो, राइट. सो जब आप डेट पे जाते हो तो आप बहुत सोच समझ के यू नो सामने वाले से बात करते हैं. जब डेट होती है तो खाना भी खाते हैं आप, तो आप खाना भी कुछ भी ऑर्डर कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के ऑर्डर कर रहे हो. स्पेसिफिकली आप कोई ऐसा खाना ऑर्डर करते हो जो कि सामने आप मतलब एकदम से आप ऐसे हो जाओ तो खाना वो गिर ना जाए, आप ये बहुत थोड़ा आप जो है वो खाते हो. लेकिन यहाँ पर एक लड़की बहुत ज्यादा वायरल हो रही है. वो अपनी फर्स्ट डेट पे जाती है और उसके बाद लड़का उसको गोस्ट कर देता है. लड़का कहता है कि बात केमिस्ट्री की नहीं है, कि मतलब हमारी केमिस्ट्री मैच नहीं की इसीलिए मैंने गोस्ट किया. कहते हैं कि भाई अब डेट पे आइए, डिनर पे आइए. लड़की ने मतलब 7 कोसों जो है वो खा लिए और जिसके क्रम्स थे कोसों के उसके कपड़ों के ऊपर गिर गए हैं और बोल रही है कि पूरे दिन से उसने कुछ खाया नहीं है. कहता है कि उसका ये वाला बिहेवियर देख के मेरा मन नहीं कर रहा, इसीलिए मैंने उस लड़की को गोस्ट कर दिया है. अब मुझे नहीं पता कि बेचारे ने क्या ही फील किया होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम किसी से पहली बार मिलते हैं, यू नो पहली बार किसी के साथ खा रहे हैं, तो हम थोड़ा सा ये ध्यान ही रखते हैं कि उसके सामने चाहे आप जितना भी मर्जी भूख लग रही है, यार मैं ऐसी ऐसी जगहों से जहां पर अगर मैंने कुछ खाया नहीं है, मैं ऐसे ही आई हूं और घर आके मैंने खाया है, जहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं यार लोगों के सामने ऐसे खुल के खाता हुआ है, ऐसे फैल के खाता हुआ अच्छा नहीं लगता है. मैं सबसे ज्यादा अगर फैल के खुल के खाती हूँ तो अपने फैमिली वालों के साथ और अपने दोस्तों के साथ. बाकी मैं बहुत ऐसा सोफिस्टिकेटेडली बिहेव करती हूँ, बट यार इसने तो फर्स्ट डेट पे ये कांड कर दिया. अब लड़के का मन नहीं है, वही टर्न ऑफ हो गया, उसको कहता है कि भाई मैंने तो गोस्ट कर दिया. तो बताइए आपको क्या लगा, लड़के ने सही किया? 3311063 पे बता दो.

0: यार मुझे 10 GB फ्री मिला मेरे हाला रिचार्ज के साथ।
1: क्या कैसे?
0: बस रिचार्ज करो और तुम्हें फ्री डेटा या मिनट्स मिलते हैं। कल मुझे 50 फ्री मिनट्स मिले।
1: रोज मिलता है क्या?
0: हाँ रोज मिलता है।
1: मैं भी अपना हाला नंबर रिचार्ज कर रहा हूँ।
0: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
2: यार कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
3: सलवा रोड पर वैल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
2: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई।
3: अरे भाई वहाँ ट्रेंड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
4: विजिट वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765-5954। वैल्वोलिन ड्रिवन बाई ट्रस्ट पावर्ड बाई क्वालिटी।
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर 1 आरजे सिमरन के
6: साथ। जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं और आप लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं। और एक चीज है, आजकल सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा जो है वो घूम रही है, वो एक जाइंट पिंक कार जो कि अपने वेंडम मॉल में है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, क्योंकि हर कोई उसके पास जाके वीडियो बना रहा, फोटो खिंचा रहा है। सो चेकआउट करके मुझे बताइएगा, क्योंकि मेरा भी वेंडम मॉल जाने का जो है वो मौका नहीं मिला है, ग्राउंड फ्लोर पे है। सो यस, एंड उसके साथ साथ रेडियो ऑलिव के यहाँ पर जब भी आप आते हो, सो आप हमेशा तारीफ करते हो कि हमारे ऑफिस का इंटीरियर, हमारे ऑफिस का माहौल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि म्यूजिक चलता रहता है, फन जो है वो होता रहता है। सो ये फन जो है वो कभी कभी हम हमारे सोशल मीडिया पर भी डालते हैं। रेडियो तो आप सुनते ही सुनते हो, लेकिन सोशल मीडिया पर भी डालते हैं, वीडियोज बनाते हैं, इन्फॉर्मेशन के वीडियोज भी होते हैं। सो मेक श्योर कि आप हमारे रेडियो ऑलिव को इंस्टाग्राम

फेसबुक है ना, हर जगह पे जो है वो फॉलो कर लीजिए. हमारा यूट्यूब का जो चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कोई भी चीज जो है वो मिस नहीं होनी चाहिए. क्योंकि बहुत सारे कॉन्टेस्ट भी आते हैं रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, जहां पर आप बहुत छोटे से स्टेप्स को फॉलो करके लाइक कॉमेंट शेयर करके बहुत सारी चीजें जीत सकते हो. एक नंबर गाने आप लोगों के लिए प्ले कर रही हूँ, तो लो फिर

0: फिर से कर दे धूम धूम एक नंबर जो आज किशोरदा की बर्थ एनिवर्सरी है। तो मैं बताती हूँ कि किशोरदा सब बढ़िया गाते हैं, हम सबको पता है कि वो कितना कमाल का गाते हैं। मेल वॉइस है उनकी, ठीक है, लेकिन वो फीमेल वॉइस में भी उन्होंने 1962 में गाया था हाफ टिकट के लिए, जिसमें वो क्या था कि जो लास्ट मिनट पे जो फीमेल आर्टिस्ट थी वो उनके साथ कुछ हो गया एंड वो नहीं आ पाई और उन्होंने दोनों ही आवाज में जो है वो गाया। बट बात करें मिसअंडरस्टैंडिंग की, तो अमिताभ बच्चन सर के साथ मिड 90s में जो थी दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, और उसके बाद उन्होंने मतलब अमिताभ बच्चन के लिए गाने के लिए मना कर दिया था। और अमिताभ बच्चन भी जो थे वो उनकी प्रोड्यूस की हुई मूवी में उन्होंने बोला कि भाई मैं भी एक्ट नहीं करूंगा। ये जो था ना वो अमिताभ बच्चन का वर्स्ट फेज था। उसके बाद उन्होंने कमबैक किया बहुत सालों बाद कौन बनेगा करोड़पति में, सो या। और किशोर कुमार ने ये चीज डिक्लेयर कर दी थी कि भाई कोई भी फिल्म रहेगी अगर उसका कोई प्लेबैक सिंगर होगा जो राजेश खन्ना का है तो वो मैं होने वाला हूं, और मैं और किसी के लिए जो है वो नहीं गाने वाला हूं, राजेश खन्ना के लिए गाऊंगा। वैसे राजेश खन्ना सर पे भी किशोरदा की आवाज जो थी वो भयंकर सूट करती थी। एंड और भी बहुत सारी बातें हैं यार किशोरदा के बारे में जो कि मैं आपको वापस लौट के बताऊंगी, लेकिन अगर बात हो रही है किशोरदा की राजेश खन्ना की, तो यार ये वाला गाना बड़ा मस्त है जो कि एक छोटी सी किशोरदा की स्टोरी के बाद आप सुनेंगे।
1: गाना सीखा नहीं लेकिन सुनने वालों को संगीत का जुनून सिखा दिया, आवाज बदली, अंदाज बदला, संगीत के उसूलों को तोड़ा और अपनी किस्मत बदली। आइए आज किशोर कुमार की बर्थ एनिवर्सरी पर खोलते हैं उनकी जिंदगी के कुछ अनकहे पन्नों को बॉलीवुड के सितारों की जुबानी।
2: वैसे अद्भुत कलाकार को अब क्या कहा जाए, उनको नमस्कार करूंगा, शत शत प्रणाम करूंगा। बहुत सी फिल्मों में उन्होंने जो मेरे लिए पार्श्व गायकी की है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज भी उन्हीं गानों की वजह से हम लोग जीवित हैं।
1: आज सारा दिन किशोरदा की कहानी सितारों की जुबानी।

और ये गर्मी जो हमारा दिल तोड़ रही है यार। और ह्यूमिडिटी अलग से होने फटे चुके हुए हैं यार। देखो टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस एंड फील्स लाइक 41 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ह्यूमिडिटी है 72%, क्योंकि इस वीकेंड में आपको पता है कि बढ़ने ही वाली है, और क्यों ऐसा बोला जा रहा है। विंड जो है 13 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। आज का मैक्सिमम टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इतनी सारी ह्यूमिडिटी में यार वो सब कुछ सब चिप चिप हो जाता ना एकदम, बालों की तो बैंड बजी हुई यार, बाल बिल्कुल ऐसे अजीब से हो गए, क्योंकि ह्यूमिडिटी की वजह से आपकी स्किन, आपके मूड की सारी चीज़ की लग जाती है। बट हाइड्रेट योरसेल्फ, पानी पीते रहो, वही कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी को पीछे तो नहीं मोड़ सकते। गर्मी बर्दाश्त हो जाती है, ह्यूमिडिटी नहीं होती यार।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर.
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है. ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ.
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है.
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है.
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए. अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद. बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
6: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

6 ਵਜੇ ਘੜ ਤਾਲੀ ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ से मुझे लगता है कि कुछ लोगों की जिंदगी में जरूर आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपको यू नो एक्सीडेंटली बैंक की तरफ से मैसेज आ जाता है और पैसे ट्रांसफर जो है वो हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो पैसे वापस भी ले लिए जाते हैं। बहुत लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ होगा, ज्यादा लोगों के साथ नहीं लेकिन कुछ लोगों के पास तो ये एक्सपीरियंस जरूर होगा। सो एक नाइजीरियन बंदा था, सो उसके पास क्या हुआ कि बैंक ने बाय मिस्टेक जो है वो 1.1 मिलियन जो थे वो डॉलर जो थे वो ट्रांसफर हो गए। अब वो बंदा कह रहा है कि भाई मैं ये पैसे नहीं वापस दूंगा, तो उस बंदे का दिमाग इतना हटा कि कहता एक साल की जेल में भुगत लूंगा लेकिन ये पैसे मैं वापस नहीं दूंगा। भाई साहब जिंदगी में कैसे कैसे लोग हैं, मतलब वो बंदा जेल चला गया यार, सीरियसली ऐसा भी कोई करता है क्या? लेकिन ये बंदे ने ऐसा किया इसीलिए वो वायरल हो गया। लेकिन यार क्या होता है कि आपको कभी भी किसी का पैसा जो है ना, मुझे मतलब मेरी लाइफ में मेरे पेरेंट्स ने भी और हम सबके पेरेंट्स ने हमको ये सिखाया कि किसी का आप जो आपका नहीं है ना आप नहीं रख सकते हो उसको, और अगर आपके पास वो चीज़ आ भी गई तो तब तक आपको चैन नहीं पड़ेगा वो चीज़ अगर आप सामने वाले के हवाले ना कर दो। भाई ये तो बैंक है, सोचो मतलब इतना पैसा सीरियसली, और उसके बाद ये बंदा कह रहा मैं नहीं वापस करूंगा, अलग लेवल की चीज़ है। सिमरन कौर आपके साथ जी ओम बिंदास।

0: Kolkata's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: यार कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
2: सलवा रोड पर वैल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
1: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई।
2: अरे भाई वहाँ ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
3: विजिट वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765-5954। वैल्वोलिन ड्रिवन बाय ट्रस्ट पावर्ड बाय क्वालिटी।
4: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।

0: 55 सेकंड स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं, ये टाइम है किसी को बर्थडे विश करने का।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम
1: सलाम। कैसे हो आप? मेरी बेटी की बर्थडे है, उसको विश करो और उसके लिए ये सॉन्ग उसको डेडिकेट करना है। ओ यारा तू प्यारो से है प्यारा, ये वाला। और वो मेरी बेटी दुनिया की बेस्ट बेस्ट बेटी है, वो मेरा दिल जिगर गुर्दा फिफड़े सब कुछ हुई है। और उसके लिए आप सब जो जो सुन रहे हैं सब उसके लिए बहुत ज्यादा दुआएं देना।
0: बिल्कुल,
1: बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सॉन्ग जरूर लगाना।
0: हमारी तरफ से बधाइयां, मिठाइयां दे, बहुत सारे पटाखे, नजवा, बहुत बहुत हैप्पी वाला बर्थडे। और सॉरी सॉन्ग रिक्वेस्ट नहीं है, लेकिन मैं आपकी बेटी के लिए एक बहुत ही प्यारा गाना जो है थोड़ी देर में प्ले

0: नजर लग जाएगी।
1: बस माँ जो है वो नजर उतार देगी, अगर नजर लग भी गई तो। मेजर साहब फिल्म से ही गाना थोड़ी देर में आप सुनेंगे, लेकिन आज हम ट्रिविया शिविया में मेजर साहब फिल्म के बारे में ही बात करने वाले हैं। और अजय देवगन का एक पर्टिकुलर हेयर स्टाइल था, आप सबको पता ही है राइट, लेकिन इस फिल्म के लिए उन्होंने आर्मी कट किया था और अपने हेयर स्टाइल को एक साइड में कर दिया था। और टीनू आनंद जो थे वो इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ मतलब बीमार हो गए थे, तो कुछ पार्ट जो थे वो इस फिल्म के अजय देवगन ने शूट किए थे। एंड इसके साथ साथ ये जो गाना अभी मैंने आप लोगों के लिए, वो इसमें गाना होता है ना एक प्यार किया तो निभाना, वो अजय देवगन ने ही शूट किया था। और उसके साथ साथ इस फिल्म में जिसका क्रेडिट जो है एक इंसान को नहीं मिला, वो है अभिषेक बच्चन, जो कि असिस्टेंट थे इस फिल्म की जब शूटिंग हो रही थी। तो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, और भी बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता है, वापस लौट के बात करेंगे। और आज किशोर दा की भी बर्थ एनिवर्सरी है तो उनका एक स्पेशल गाना।
2: गाना सीखा नहीं लेकिन सुनने वालों को संगीत का जुनून सिखा दिया, आवाज बदली, अंदाज बदला, संगीत के उसूलों को तोड़ा और अपनी किस्मत बदली। आइए आज किशोर कुमार की बर्थ एनिवर्सरी पर खोलते हैं उनकी जिंदगी के कुछ अनकहे पन्नों को, बॉलीवुड के सितारों की जुबानी।
3: जब मिलते थे, आशा मैं गानी तुम्हारी मन की भाषा, और कभी बहुत हंसाते थे तो मैं, दादा आवाज खराब हो रहा है हंस हंस के, मैं गा नहीं पा रही हूँ, मुझे मैं बोलते थे मैं यही चाहता हूँ ना, तू नहीं गाए मैं अच्छा गाऊँ।
2: आज सारा दिन किशोर दा की कहानी सितारों की जुबानी।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
2: हाय, दिस इज बिपाशा बासु।
3: हाय, मैं राजकुमार राव।
4: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
5: हाय, दिस इज दिशा पार्डी।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
6: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
7: सिमरन के साथ।
8: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
9: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

मेजर साहब फिल्म किस किसने देखी है? भाई अच्छी फिल्म थी यार। इसमें जो एक और गाना है ना सोना सोना, सो ये जो गाना था ना वो मेजर साहब के लिए रिकॉर्ड नहीं हुआ था। लाल बादशाह फिल्म थी 1990 जो में आई थी 1999 में, सो ये गाना उस फिल्म में यूज होने वाला था लेकिन समा उस फिल्म के लिए यूज नहीं हुआ। फिर अमिताभ बच्चन ने रिक्वेस्ट किया कि भाई ये मेरा होम प्रोडक्शन है, मेजर साहब के लिए मुझे ये गाना चाहिए, सो दे लाइक ओके ठीक है। फिर उस फिल्म में गाना जो था वो यूज हुआ था। अब जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो अमिताभ बच्चन एक जब शूट चल रहा था बोल रहे थे एक एक्स्ट्रा शॉट उनको चाहिए था, तो टीनू आनंद बोल रहे थे कि भाई हमारे पास उतना टाइम नहीं है। तो अमिताभ बच्चन ने बोला कि भाई तू प्रोड्यूसर है मतलब ठीक है, तो अब एक काम कर ले तू ही कर ले है ना फिल्म। तो दोनों के बीच में जो थी वो फाइट हो गई थी इस चीज को लेके, एंड उसके बाद टीनू जो थे वो निकल गए थे कुछ टाइम के लिए। सो इस फिल्म में जो निशा का कैरेक्टर था उसके लिए पहले तब्बू को कंसिडर किया गया था, लेकिन बाद में फिर ये न्यूज आने लगी कि तब्बू जो है वो शादी कर रही है और उसके बाद वो रिटायर होने वाली है फिल्मों से। सो या उसके बाद फिर सोनाली बेंद्रे की जो थी वो एंट्री हो गई। सो या इस फिल्म के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बाकी बातों का क्या, वो भी तो करनी है।

0: स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ।
0: बहुत प्यारी चीज है कि एनीथिंग अनरिजॉल्व्ड अगर आपके वो अंदर है तो वो चीज जो है वो आपकी माइंड में, आपकी बॉडी में, आपके इमोशंस पे जो है वो सारी चीज दिखेगी अंटिल यू हील। क्योंकि हम लोगों को लगता है कि हमारे अंदर जो चल रहा है, जो चीज हमको प्रॉब्लम दे रही है, वो चीज को अगर हम एड्रेस नहीं करेंगे, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे नहीं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये जो 70 टैब खुली रहती है ना उस चीज को लेके, वो आपकी हेल्थ पे नजर आने लगता है, वो आपके चेहरे पे नजर आने लगता है, वो आपके हाव भाव में नजर आने लगता है, वो आपके डेली लाइफ को अफेक्ट करता है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई इशू चल रहा है, कोई चीज आपको अंदर ही अंदर से खाए जा रही है, तो उसके बारे में बात करना, एड्रेस करना उसको बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस तरीके से इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर रिजॉल्व नहीं हो सकती तो उसको फिर छोड़ दीजिए, क्योंकि अनहील्ड पर्सन जो है ना वो बहुत ज्यादा, जैसे अनहील्ड जख्म जो है ना वो आपको दर्द देता रहता है बार बार, वैसे ही अनहील्ड अगर आप रहेंगे ना तो आपकी जिंदगी में आपको बहुत दुख होने वाला है, वो चीज आपको चैन ही नहीं देने वाली है, ना ही आपको चैन की नींद। आप पार्टी में भी अगर रहेंगे तो आप अजीब ही फील करेंगे और आपका ध्यान जो है वहां पे रहेगा नहीं। आई नो बहुत हार्ड होता है ये बोलना और मतलब बोल के करना, बट ट्राई जरूर कर सकते हो यार, ये जरूर ट्राई करना, क्योंकि हंसते मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हो यार आप।
1: तुम

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: यार कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
2: सलवा रोड पर वैल्वोलिन एएमटीसी, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
1: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई?
2: अरे भाई वहाँ ट्रेंड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
3: विजिट वैल्वोलिन एएमटीसी सलवा रोड या कॉल करें 7765595। वैल्वोलिन ड्रिवन बाई ट्रस्ट पावर्ड बाई क्वालिटी।
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ।
6: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਸੁਣਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪ ਹਮ ਖੇਲਣ ਵਾਲੇ ਹੈ देखा दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपका नाम मैं अभी कभी ले लूं तो आप अभी के अभी अपना नाम लिख के मुझे भेज दो ताकि मुझे पता लग जाए कि मुझे कौन सा नाम लेना है ठीक है मेरा व्हाट्सएप का नंबर बता रही हूं बस उसी पे लिख के भेज दीजिएगा नो वॉइस नोट नो हाय नो हेलो सिर्फ और सिर्फ आपका नाम ओके मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 3311063 जी हाँ 3311063 इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिख के भेज दो अगला गाना शुरू होने से पहले जितने भी नाम दिखेंगे वो सारे नाम मैं बोलूंगी निजू फिलिप रिश्विन रोज बबीता थैंक यू सो मच समीरा जी थैंक यू सो मच यूसुफ जी थैंक यू सो मच आसमा जी थैंक यू सो मच एस के जी थैंक यू सो मच खेमराज जी थैंक यू सो मच फारा चांद जी थैंक यू सो मच नारायण जी थैंक यू सो मच मोहम्मद वसीफ जी थैंक यू सो मच अंजू जी थैंक यू सो मच फातिमा यूसुफ जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए कामरून जी थैंक यू सो मच आसमा जी थैंक यू सो मच नोआ जी थैंक यू सो मच असद भट्टी जी थैंक यू सो मच आपके

ये मोहम्मद जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, प्रतीक जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, सुजन थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। अगला गाना शुरू होने वाला है, जल्दी से लिख दो अपना नाम। इमरान जी थैंक यू सो मच, अफीफ जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, एंड दैट्स इट फॉर नाउ। जिन जिन लोगों के नाम ले लिया अब आप थैंक यू लिख सकते हो, और थैंक यू के साथ अपना फेवरेट वाला ही मुझे बनाना मत भूलना।

0: Wanted updates.
1: Qatar develops smart traffic management systems. Beyond autonomous mobility, the ministry has also implemented a comprehensive national traffic data project that led to a creation of transportation data management system. The digital platform uses advanced spatial and geographic database to analyze traffic flows, support transport studies, and strengthen data-driven decision-making in line with international standards. Haya wins Silver Stevie Award for Technology Excellence in Government Innovation. Qatar Tourism has announced that the Haya platform has been awarded silver in the Technical Innovation of the Year in Government Technology category at 2026 Stevie Award for Technology Excellence, recognizing its continued evolution as a digital platform driving AI-enabled, automated, and intelligently integrated government services. Qatar amends 10NC law, introduces 250 riyal lease registration fee and new rental dispute procedures. Qatar has enacted Law No. 8 of 2026, amending certain provisions of Law No. 4 of 2008 concerning the leasing of real estate, introducing 250 riyal lease registration fee, expanding mandatory lease registration requirements for certain beneficiaries of state property, and revising the procedures governing rental disputes, appeals, and penalties.
0: Olive updates. गाना सीखा नहीं, लेकिन सुनने वालों को संगीत का जुनून सिखा दिया। आवाज बदली, अंदाज बदला, संगीत के उसूलों को तोड़ा और अपनी किस्मत बदली। आइए आज किशोर कुमार की बर्थ एनिवर्सरी पर खोलते हैं उनकी जिंदगी के कुछ अनकहे पन्नों को बॉलीवुड के सितारों की जुबानी।
2: मेरा फेवरेट गाना उन दिनों होता था, जिंदगी की यही रीत है हार के बाद जीत। अदा ने गाना शुरू किया, जिंदगी की यही रीत है। मैंने कहा मेरा फेवरेट गाना, नेक्स्ट लाइन गाई तो कुछ थोड़ा चेंज करके गाए, थोड़े ऐसा कुछ किया। मैंने कहा यार ये तो ट्यून तो कुछ और है, शाम को अगर गाएंगे तो सब लोगों को पता लग जाएगा कि
3: गलत गाए।
2: मेरे मुंह से मुश्किल से मैं कह रहा हूँ दादा दादा दादा, तो दादा रुक गए। हाँ बोलिए कौन है, आप कौन? अनुपम खेर। सब कुछ और निकलना, मैंने कहा दादा आप गलत गा रहे हो, किशोर कुमार को मैं बोल रहा हूँ आप गलत गा रहे हो, मैं उनको गा के सुना रहा हूँ। मैंने कहा दादा ओरिजिनल में आपने गाया जिंदगी की यही रीत, अच्छा जिंदगी की है, और ओरिजिनल अब कैसे गा रहा हूँ? तो मैंने कहा अब आप गा रहे हो जिंदगी की समथिंग, अच्छा अच्छा ओरिजिनल किसने गाया? मैंने कहा आपने, और ये कौन गा रहा आप? आपके बाप का क्या?
0: आज सारा दिन किशोर दा की कहानी सितारों की जुबानी।

0: जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: हाँ जी अजब गजब लव से आप ये गाना सुन रहे हैं। मैं बता देती हूँ अब क्या होने को है। अब हम खेलने वाले हैं
1: रेडियो ऑलिव पर
2: बहुत बढ़िया बहुत।
0: तो बताओ ये एक चुटकी सॉन्ग क्या है, कौन सा है? बहुत ही प्यारा गाना है यार, बहुत रोमांटिक गाना है। बताओ कौन सी फिल्म से आपको लग रहा है, गाना कौन सा, फिल्म छोड़ दो गाना बता दो। आपको गाना गा के बताना है या फिर अगर आपको गाना अच्छा लगता है तो गा के बता सकते हैं, नहीं तो बोल के बता सकते हैं। बट एक चीज आप जो नहीं कर सकते वो है लिख के नहीं बताना है। प्लीज राइट मत करिएगा, राइट नहीं चाहिए हमको, आपकी आवाज चाहिए यार। सो क्विकली आप वॉइस नोट रिकॉर्ड करिए, हे सिमरन अपना नाम बताइए और गाना गाइए या फिर बता दीजिए गाना कौन सा है। 3311063 पे भेज दीजिए। एक बार वापस से प्ले कर रही हूँ, आप रिकॉर्डर ऑन कर लीजिए ताकि आप दो तीन बार सुन सके। डबल थ्री डबल वन वन जीरो सिक्स थ्री व्हाट्सएप करना है आपको।
3: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
4: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: चाक पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਹਮ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹੈਂ
1: ਰੇਡੀਓ ਓਲਿਵ ਪਰ
2: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
0: सो आपको एक चुटकी सॉन्ग मैंने सुनाया था तो चेक करते हैं आपको पता लगा
3: है सिमरन फारूक एंड दिस सॉन्ग जिंदगी दो पल की
0: ब्यूटीफुल
3: इंतजार कब तक हम करेंगे भला
0: जियो बिंदास दोस्त हाँ जी
4: मेरा नाम रफी अहमद लखनऊ गाना है

वाह, बधाइयां भी चाहिए थे, बहुत सारे पटाखे। यस, गाना बिल्कुल सही है। इंतजार तो हम सबको अपनी लाइफ में किसी ना किसी चीज का है। कोई कॉल का इंतजार कर रहा है, कोई एक चांस का इंतजार कर रहा है, कोई एक ट्रिप का इंतजार कर रहा है, कोई एक छुट्टी का इंतजार कर रहा है। तो इंतजार जब तक जिंदगी में होता है ना, तब तक एक्साइटमेंट बनी रहती है।

0: बात बताऊं, कल ना वेंसडे है। अरे मोटिवेट कर रही हूँ कि वीकेंड से बस हम कुछ ही दिन दूर हैं। मान लीजिए कि एक ही दिन दूर है, कल देखो फ्राइडे मतलब क्या कहते हैं वेंसडे हो जाएगा, फिर उसके बाद थर्सडे आ जाएगा। थर्सडे तो हम वीकेंड की तरह ही काउंट करते हैं। आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर रही हूँ यार मैं। कह जी सोने की दादी की हाल चाल, सत श्री अकाल सिमरन कौर है थोड़े नाल। अब सिमरन कौर के यहाँ से गलती माने का टाइम आ चुका है। जबरदस्त इवनिंग्स कल शाम को 5 बजे फिर से लेके आती हूँ। करेंगे बहुत सारा फन। अभी के लिए ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ठीक है? खाते पीते रहो, ऐश कर दे रहो, चेहरे बड़े वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना। बी नाइस टू एवरीवन यार। गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सो किलो।
1: Radio Olive Park. Fresh, fresh, fresh, fresh, fresh. Ye gana fresh. Fresh song of the hour. Ye gana.

0: So, आज का मिडनाइट लाउंज डेडिकेटेड है उस आवाज को जो सिर्फ गाती नहीं है, मुस्कुराती भी है। हम सब उन्हें किशोर कुमार के नाम से जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका असली नाम था आभास कुमार गांगुली। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल 106.3 FM, दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज। सो आज किशोर कुमार की बर्थ एनिवर्सरी है। मध्य प्रदेश के खंडवा से एक लड़का सपने लेकर मुंबई आया। बड़े भाई अशोक कुमार पहले से फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा थे। सबको लगता था कि आभास भी एक्टर बनेंगे, लेकिन उनका दिल एक्टिंग में नहीं, गाने में था। और शुरुआत में वो अपना फेवरेट सिंगर केएल सहगल की स्टाइल कॉपी करते थे। एक दिन लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर एसडी बर्मन जी ने उन्हें कहा कि किशोर, सहगल सिर्फ एक ही हो सकते हैं, अगर याद रहना है तो अपनी आवाज़ ढूंढो। और बस शायद वही एक सेंटेंस था जो इंडियन म्यूजिक की हिस्ट्री को बदल कर रख देता है। उस दिन के बाद किशोर कुमार ने किसी की नकल करना छोड़ दिया था और दुनिया को वो आवाज दी जिसे आज भी कोई कॉपी नहीं कर पाया। कितनी खूबसूरत बात है ना, हम सब शुरुआत में किसी न किसी को फॉलो करते हैं, लेकिन असली पहचान तब बनती है जब हम अपनी आवाज ढूंढ लेते हैं। सो यूजुअली अगर आप भी अपनी लाइफ में किसी को कॉपी करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि यू हैव टू फाइंड आउट योरसेल्फ। सो सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 FM, आई विल बी राइट बैक विद लॉट ऑफ न्यू कॉन्वर्सेशंस टुडे। और आज फुली डेडिकेटेड है हम किशोर कुमार जी के लिए। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: गाना सीखा नहीं लेकिन सुनने वालों को संगीत का जुनून सिखा दिया। आवाज बदली, अंदाज बदला, संगीत के उसूलों को तोड़ा और अपनी किस्मत बदली। आइए आज किशोर कुमार की बर्थ एनिवर्सरी पर खोलते हैं उनकी जिंदगी के कुछ अनकहे पन्नों को बॉलीवुड के सितारों की जुबानी।
2: किशोर दा एक दिन आए और मुझे बोलते हैं, चल आज एक काम करते हैं, हम लोग गाना पीछे से गाते हैं। I feel very offended. पीछे से गाएंगे मतलब? के दादा मतलब आप कह रहे हैं? नहीं नहीं, आज किशोर ये गाना पीछे से गाएगा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा दिमाग कह रहा था कहीं ना कहीं ये क्या कहने जा रहा है। मुझे बस शॉक, मुझे शॉक ये माइक पर आवाज चल रही है। चलो चलो ट्रैक लगाओ, पीछे से गाऊंगा। तो सब कंफ्यूज, पीछे से पीछे से पीछे से पीछे। सडनली ना दादा डेड, ही वाज अ जीनियस। ये सर घबराओ मत, पीछे का मतलब आप क्या सोच रहे हो? नहीं आप कुछ नहीं सोच रहे, पीछे का मतलब जो डबिंग करने आया हूँ मैं, मुखड़ा है ना इंट्रोडक्शन का, वो मैं नहीं गाऊंगा। मैं पहला अंतरा भी नहीं गाऊंगा, मैं सेकंड अंतरा भी नहीं गाऊंगा, जो लास्ट मुखड़ा आएगा मैं पहले वो गाऊंगा। उसको कहते हैं पीछे से गाना। मैं लो दादा ऐसा क्यों? इसका मतलब इसलिए क्योंकि सब लोग हैरान होंगे कि दादा गाते गाते थके नहीं, एंड तक फ्रेश कैसे है। तो मतलब ही वांटेड हिज फ्रेश वॉइस टू कम इन द एंड, ही वाज जीनियस।
1: आज सारा दिन किशोर दा की कहानी सितारों की जुबानी।

Good evening, welcome back. You are listening Radio Olive 106.3 FM. This is me, Muskan, with you. Our show ka naam hai Midnight Lounge. Agar main aapse poochun ki genius kaise hote hain, to shayad aap kahoge serious, disciplined aur maybe hamesha shant. Lekin Kishore Kumar ji ne teenon mein se kuch bhi nahi apnaya tha. Unke bungalow ke bahar ek board laga tha, Be aware of Kishore Kumar. Kabhi wo पेड़ों से बातें करते थे तो कभी गार्डन में प्लांट्स को अपना दोस्त बना लेते थे और अगर कोई बिना अपॉइंटमेंट के आ जाता तो उसके साथ ऐसी मस्ती करते कि वो दोबारा सोच के ही आता था. लोग उन्हें बहुत ही ज़्यादा सनकी समझते थे लेकिन उनके करीबी लोग कहते थे कि वो बस एक्टिंग नहीं करते थे, जैसा दिल करता था वैसा ही करते थे और शायद इसी वजह से उनकी मतलब हर हंसी भी असली लगती थी और उनकी आवाज़ भी. सो आज किशोर कुमार की बर्थ एनिवर्सरी एंड आई थॉट व्हाई नॉट लेट्स टॉक अबाउट हिम. उनके बारे में इतने किस्से कहानियां हैं जिनके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है. कभी कभी दुनिया नॉर्मल बनने को कहती है लेकिन इतिहास हमेशा उन लोगों को याद रखती है जो अपनी ओरिजिनलिटी कभी नहीं छोड़ते. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान और नंबर है 3311063. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

वेलकम बैक. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम. दिस इज मी मुस्कान विद यू. शो का नाम है मिडनाइट लाउंज. सो टुडे हम यूजुअली अलग अलग चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि क्यों ना सिर्फ किशोर कुमार जी की बात की जाए, बिकॉज आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है. आज अगर कोई सिंगर बनना चाहता है तो पहला सवाल क्या होता है, ट्रेनिंग कहाँ से ली. लेकिन किशोर कुमार की आवाज़ बिल्कुल अलग थी. उन्होंने कभी फॉर्मली क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग नहीं ली थी, ना किसी बड़े उस्ताद के पास तालीम ली थी, ना सालों का रियाज और कोई कहानी थी. उन्होंने सुना, ऑब्जर्व किया और फिर अपनी आवाज़ खुद बनाई. उनकी फेमस जो स्टाइल था वो भी उन्होंने वेस्टर्न सिंगर से इंस्पायर होकर सीखा था, लेकिन उसे इंडियन म्यूजिक का हिस्सा बना दिया. और ये सिर्फ टैलेंट नहीं था, ये क्यूरोसिटी थी, सीखने की भूख थी. और शायद इसीलिए आज भी कोई किशोर कुमार जैसा गा नहीं पाता, क्योंकि उन्होंने किसी को कॉपी नहीं किया, खुद को क्रिएट किया, और इसीलिए वो यूनिक थे. सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि डिग्री ज़रूरी हो सकती है, लेकिन सीखने की आदत उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होती है. मतलब मुझे ऐसा लगता है. सो आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है. 3311063 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो. बिंदास.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: ये है मिडनाइट लाउंज.
0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM. जियो बिंदास.

तो सिर्फ गाने हिट नहीं हुए, एक नई आवाज का दौर शुरू हो गया। राजेश खन्ना की स्क्रीन प्रेजेंस और किशोर कुमार की आवाज, ऐसी जोड़ी बनी जैसे आज भी गोल्डन एरा की सबसे आइकॉनिक कॉम्बिनेशंस में गिना जाता है। कभी कभी ना एक प्रोजेक्ट, एक मौका या एक गाना पूरी जिंदगी के डायरेक्शन को बदल कर रख देता है। इसीलिए अपनी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को कभी छोटा मत समझिएगा, क्या पता वही आपकी आराधना हो। एंड आई विल से कि आप बताइए, अगर किशोर कुमार और राजेश खन्ना की जोड़ी का सिर्फ एक गाना आपको सुनने के लिए मिले तो आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? बाय द वे, दिस इज मी मुस्कान विद यू, सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 FM और वी आर टॉकिंग अबाउट किशोर कुमार जी। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

गुड इवनिंग, वेलकम बैक. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम. दिस इज मी मुस्कान विद यू. आवर शो का नाम है मिडनाइट लाउंज एंड वी वर टॉकिंग अबाउट किशोर कुमार जी. आज है उनकी बर्थ एनिवर्सरी. अगर मैं बोल दूँ चलती का नाम गाड़ी, पड़ोसन या हाफ टिकट, तो आपके चेहरे पर ना मुस्कान आ ही जाएगी. लेकिन मज़ेदार बात यह है कि किशोर कुमार कभी एक्टर बनना ही नहीं चाहते थे, वो तो सिर्फ गाना चाहते थे. एक्टिंग उन्होंने मजबूरी में शुरू की थी, लेकिन जब कैमरा ऑन होता था तो उन्हें लगता ही नहीं था कि ये इंसान ना एक्टिंग कर रहा है. मतलब हर कोई ये कहता था कि एवरीथिंग इज़ सो नेचुरल. उनकी कॉमेडी इतनी नेचुरल थी जैसे वो रोल नहीं अपनी ज़िंदगी जी रहे हों, और शायद इसीलिए उनकी फिल्में भी बहुत फ्रेश लगा करती थी. कभी कभी लाइफ हमें उस रास्ते पर लेकर जाती है जो हमें कभी चूज ही नहीं करना होता, मतलब हमने मतलब उसको खुद से नहीं लिया होता, और वही रास्ता हमारी पहचान बन जाता है. सो किशोर कुमार जी के साथ भी बस वैसा ही हुआ था. सो यू टेल मी, किशोर कुमार की एक्टर वाली कौन सी फिल्म देखकर आपको आज भी हंसी आ जाती है और आपको लगता है व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्टिंग यार. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311063. मैं हूँ मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

आज की कहानी सुनकर शायद आप भी कहेंगे, ये कैसे पॉसिबल है। फिल्म थी हाफ टिकट, गाना था आके सीधे लगी दिल पे। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज। आज किशोर कुमार जी की बात कर रहे हैं, पूरा शो उन्हीं को डेडिकेटेड है क्योंकि आज उनकी है बर्थ एनिवर्सरी। रिकॉर्डिंग के वक्त फीमेल सिंगर अवेलेबल नहीं थी तो किशोर कुमार ने मजाक मजाक में कहा कि मैं ही गा देता हूं। और फिर उन्होंने सिर्फ हीरो की आवाज़ नहीं, हीरोइन की आवाज़ भी खुद रिकॉर्ड कर दी। और जब गाना रिलीज हुआ लोग हैरान रह गए क्योंकि दोनों वॉइसेस में इतना डिफरेंस था कि किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि दोनों आवाज़ें एक ही इंसान की हैं। ये सिर्फ सिंगिंग नहीं थी बॉस, दिस वॉज इमेजिनेशन। टैलेंट तब और खूबसूरत लगता है जब उसके साथ थोड़ा सा बचपना हो, और वो बचपना था किशोर कुमार जी के पास। सो किशोर कुमार जी का सबसे प्लेफुल गाना जो आपके हिसाब से आपको लगता है कि यार ये आपको कभी भी हंसा सकता है या रुला सकता है, सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 FM। अभी के लिए मैं बस यही कहूँगी कि थोड़ी देर में लौट कर आऊँगी और बात करेंगे हाफ पेमेंट और हाफ मेकअप वाले किस्से की। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Yeah, midnight love.
2: Ye hai midnight love.

तो ऐसा हुआ है कि कई बार किशोर कुमार जी को लोगों ने एसेंट्रिक कहा है, उनको कहते ही थे बेसिकली लोग, लेकिन उनके हर फनी एक्ट के पीछे एक प्रिंसिपल होता था। एक बार एक प्रोड्यूसर ने उनकी पूरी पेमेंट नहीं दी। अगले दिन किशोर कुमार जी सेट पर आए लेकिन सिर्फ आधे चेहरे पर मेकअप करके। डायरेक्टर भी हैरान, सबने पूछा ये क्या है और उन्होंने मुस्कुरा कर कह दिया हाफ पेमेंट मिली है तो हाफ मेकअप ही होगा। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज। मतलब थोड़ी देर के बाद प्रोड्यूसर ने बाकी पैसे भी दे दिए और फिर मेकअप भी पूरा हुआ। मजाक लगता है लेकिन कई बार मैसेज बहुत बड़ा था। अपने टैलेंट की रिस्पेक्ट करना वो जानते थे। सबसे पहले खुद वो अपनी रिस्पेक्ट करते थे और उन्हें लगता था कि जब वो खुद की रिस्पेक्ट करेंगे तभी कोई दूसरा उनकी रिस्पेक्ट करेगा। अगर आप खुद अपनी वैल्यू नहीं समझोगे तो दुनिया भी नहीं समझेगी। सो आप बताइए कि आपके हिसाब से सेल्फ रिस्पेक्ट और सक्सेस में सबसे पहले क्या आता है। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 FM, दिस इज मी मुस्कान विद यू और ये है मिडनाइट लाउंज। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास। मॉर्निंग आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।

गुड इवनिंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम. दिस इज मी मुस्कान विद यू. आवर शो का नाम है मिडनाइट लाउंज. और आज का शो खत्म करने से पहले एक छोटा सा सवाल. आखिर ऐसा क्या है कि 2026 में भी किशोर कुमार हर जनरेशन के फेवरेट हैं? दादाजी भी उन्हें सुनते हैं, पापा भी, और आज जो प्लेलिस्ट में यंगस्टर्स भी मतलब उनके फैन हैं. शायद इसीलिए क्योंकि किशोर कुमार सिर्फ गाते नहीं थे, वो इमोशंस बनकर निकलते थे. पल पल दिल के पास में मोहब्बत, जिंदगी एक सफर है सुहाना में आज़ादी, मेरे महबूब कयामत होगी में वो दर्द, और हर गाने में एक अलग इंसान, एक ही आवाज़ लेकिन हजार एहसास. और शायद इसीलिए लेजेंड्स कभी रिटायर नहीं होते, उनकी आवाज़ हर जनरेशन अपनी बना लेती है. सो आज के लिए आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा. आज किशोर कुमार जी की बर्थ एनिवर्सरी थी, आई वॉज टॉकिंग अबाउट हिम ओनली. अगर किशोर कुमार जी को सिर्फ एक गाने से याद करना हो तो आप किस गाने से याद करेंगे उसे? कौन सा ऐसा गाना होगा जो चुनना चाहेंगे और क्यों? फॉर नाउ आई हैव टू से कि मैं हूँ मुस्कान, और आज ये खास ट्रिब्यूट था उस आवाज़ के नाम जो शायद कभी पुरानी नहीं होगी. सो हैप्पी बर्थ एनिवर्सरी टू किशोर दा. एंड फॉर नाउ आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा. बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट. स्टे ट्यून्ड, जियो, बिंदास.

0: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Yeah, Midnight Lounge.
2: ये है Midnight Lounge.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम
3: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम

0: तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ
0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM

मासूम नजर, भोला चेहरा, हंसते हुए लब, एक शब्द हो तुम, कोई सच हो तुम, या उलझा हुआ ख्याल हो, फिलहाल तुम एक सवाल हो।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: जिया बिंदास। चांदनी

One Log sunte hain number one radio station Radio Olive 106.3 FM.

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: थे। बाकी सब ठीक,
1: बस चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक,
1: बस चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक है ना?
1: बस चल रहा है भाई।
0: What about you?
2: हाँ चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक,
1: बस चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक,
2: बस चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक है ना?
1: हाँ ठीक है।
0: और तेरा?
2: बस चल

0: तो डाइट चल रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है,
1: तेरा भी बोलना
0: मेरा भी चल रहा है। व्हाट अबाउट यू?
1: हाय लिख के दूं क्या?

0: रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है,
1: तेरा भी बोलना
0: मेरा भी चल रहा है, व्हाट अबाउट यू?
1: हाय, लिख के दूँगा।
2: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ओलिव 106.3।

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.